0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। এতিয়া 6 বজাত হিন্দীত আৰু 6:05ত ইংৰাজীত বাতৰি শুনিবলৈ পাব।
1: আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই ফৰহত নাজ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलाइडिस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। उन्होंने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
2: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता को

0: शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने आतंकवाद के प्रति अपनी शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को भी दोहराया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज कोलकाता पहुंचेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा है। श्री रूबियो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से बातचीत भी करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलू की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में इन्वेस्टमेंट कंपनी इंस्टीट्यूट ऑफ द अमेरिका के एशिया और ग्लोबल एनालिटिक्स के प्रबंध निदेशक मैथ्यू मोहलेकैंप से मुलाकात की और भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य केंद्र प्रौद्योगिकी, अवसंरचना, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल व्यवस्था सहित उच्च विकास वाले क्षेत्रों में अमरीकी संस्थागत निवेश को मजबूत करना, साथ ही विनिर्माण, नवाचार और रोजगार जन को बढ़ावा देना था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी है। मंत्रालय ने कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर अस्थायी दबाव को तेल विपणन कंपनियों द्वारा निरंतर आपूर्ति निगरानी और समन्वित वितरण प्रयासों के माध्यम से दूर किया जा रहा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में पुणे से एक और महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीषा हवलदार के रूप में हुई है, जिन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है, जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र प्रांतिरक्षा मिशन में कार्यरत भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार के लिए चुना गया है। मेजर बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Neena Arakel. Prime Minister Narendra Modi will distribute more than 51,000 appointment letters to newly recruited youth in various government departments and organizations at the 19th Rozgar Mela through video conferencing today. Mr. Modi will also address the gathering on the occasion. Our correspondent reports that the Rozgar Mela is a key initiative reflecting the Prime Minister's commitment to giving top priority to employment generation and turning this vision into reality. The newly recruited candidates, selected from across the country, will be joining various ministries and departments, including Ministries of Railways, Home Affairs, Health and Family Welfare, and Department of Higher Education, among others. Prime Minister Narendra Modi and Cyprus President Nikos Christodoulidis have called for strengthening multilateral efforts to combat terrorism and for the early finalization and adoption of the Comprehensive Convention on International Terrorism within the UN framework. In a joint statement issued after talks between the two leaders in New Delhi yesterday, both sides urged strong and coordinated action against all UN and EU designated terrorists and terrorist organizations, including those listed under the 1267 UN Security Council Sanctions Committee. As maritime nations with deep-rooted naval traditions, India

0: জেংৰাইমুখ গাঁও পঞ্চায়তত গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্যসূচী সফলতাৰে ৰূপায়ণ কৰা হয়। বিভিন্ন চৰকাৰী বিভাগৰ মুৰববী বিষয়াসকলৰ উপস্থিতিত প্ৰতিখন গাঁও পঞ্চায়ততে বিশেষ গাঁওসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভাসমূহৰ জৰিয়তে স্থানীয় ৰাইজৰ অভাৱ অভিযোগসমূহ পোনপটীয়াকৈ শুনি এইসমূহৰ সমাধানৰ উদ্দেশ্যে বিশেষ জনশুনানী কাৰ্যসূচীও সফলতাৰে সম্পন্ন কৰা হয়। অসমকে ধৰি দেশৰ অন্যান্য প্ৰান্তত ইন্ধনৰ চাহিদা হঠাৎ বৃদ্ধিৰ সময়তে পেট্ৰল ডিজেল আৰু ৰন্ধন গেছৰ যোগান সুনিশ্চিত কৰাৰ বাবে ৰাজহুৱা খণ্ডৰ তৈল বিপণন কোম্পানী IOCL, BPCL আৰু HPCLয়ে সমন্বিতভাৱে কাম কৰি আছে। বিভিন্ন ৰাজ্যত ঋতুভিত্তিক কৃষি আৰু খেতি চপোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত শেহতীয়াকৈ তৈল বিপণন কোম্পানীসমূহত পেট্ৰলিয়ামজাত সামগ্ৰীৰ চাহিদা যথেষ্ট বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হয়। ইয়াৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই তৈল বিপণন কোম্পানীসমূহে ডিপো, পাইপলাইন, LPG বটলিং প্লাণ্ট আৰু খুচুৰা বিপণীসমূহৰ জৰিয়তে ইন্ধনৰ নিৰৱচ্ছিন্ন যোগান অব্যাহত ৰখাৰ প্ৰয়াস কৰিছে। ইন্ধন বিতৰণৰ সুবিধা তথা নিৰৱচ্ছিন্ন যোগান নিশ্চিত কৰাৰ বাবে কোম্পানীসমূহে ৰাজ্যসমূহৰ সৈতে সমন্বয় বজাই ৰাখিছে। উল্লেখযোগ্য যে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত বিগত তিনিদিনত 1,32,00,000 ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰ বুকিং হোৱাৰ বিপৰীতে 1,34,00,000 চিলিণ্ডাৰ যোগান ধৰা হৈছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ শিক্ষা মন্ত্ৰালয় আৰু নীতি আয়োগৰ দ্বাৰা আয়োজিত বিকশিত ভাৰত বিল্ডাথন 2025 প্ৰতিযোগিতাত মৰিগাঁও জিলাৰ বিদ্যালয়ে সাফল্য লাভ কৰিছে। জিলাখনৰ মায়ং শিক্ষা খণ্ডৰ কাৰচুৱাবৰী মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ে এই প্ৰতিযোগিতাত ৰাজ্যিক স্তৰত বঁটা লাভ কৰাৰ লগতে মৰিগাঁও ছোৱালী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আৰু শ্বহীদ সূৰ্যবৰা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ক্ৰমে প্ৰটোটাইপ আৰু আৰ্হিৰ বাবে জিলা পৰ্যায়ৰ বঁটা লাভ কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছে। আমাৰ এতিয়াৰ বাতৰি ইমানতে অন্ত পৰিল। পৰৱৰ্তী বাতৰি বুলেটিন পুৱা 9 বজাত শুনিবলৈ পাব।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो। और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर .gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रुपए के अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की 4 दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। और IPL क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवचयनित युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दर्शाता है।
5: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के सभी हिस्सों से चयनित नव नियुक्त उम्मीदवार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभाग विभागों में नियुक्त होंगे, जिसमें रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य विभाग शामिल हैं। यह रोजगार मेला देश के विकास में युवाओं की भागीदारी को मजबूत करने

0: दिशा में एक और बड़ा कदम है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अंतिम रूप देने का आह्वान किया है। दोनों नेताओं ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दोहराते हुए दोहरे मापदंड, राज्य प्रायोजित आतंकवाद और किसी भी परिस्थिति में आतंकवादी कृत्यों के औचित्य को अस्वीकार कर दिया। नई दिल्ली में कल दोनों नेताओं के बीच हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा नामित सभी आतंकियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मजबूत और समन्वित कार्रवाई का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ भारत के रक्षा सहयोग में वृद्धि हुई है।
2: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत और साइप्रस के बीच सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और साइप्रस की मित्रता साझा मूल्यों और एकजुटता पर आधारित है।
3: 1962 में हमारे राजनयिक संबंधों की स्थापित के बाद से ही भारत और साइप्रस एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। हमारी जांचीपुर की मित्रता आपसे सम्मान, साझा मूल्य, विश्वास और एकजुटता पर आधारित है। आने वाले वर्षों में भारत साइप्रस के साथ अपने व्यापक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व के साथ हमारी मित्रता निरंतर सुदृढ़ होती जाएगी।
1: राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। ये रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। यह निर्णय कल मुंबई में रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 623वीं बैठक में लिया गया। बैंक ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान उसकी सकल आय पिछले वर्ष की तुलना में 26.42% बढ़ी। बैंक का व्यय 27.6% बढ़ा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में यह तीसरी वृद्धि है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रूपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल के मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रूपये प्रति लीटर हो गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर कोलकाता पहुंच गए हैं। श्री रूबियो की पहली भारत यात्रा है। ये यात्रा अमेरिका और भारत के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार, रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और हिंद प्रशांत रणनीति में सहयोग का विस्तार करना है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने हवाई अड्डे पर श्री रूबियो का स्वागत किया। श्री रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी बातचीत करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास

0: मास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को वर्ष 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेजर अभिलाषा बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत हैं।
1: मेजर अभिलाषा बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। मेजर बराक ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय शांति रक्षक बन गई हैं। इससे पहले मेजर सुमन गवानी को 2019 में और मेजर राधिका सेन को 2023 में ये पुरस्कार मिला था। वर्ष 2016 में स्थापित ये पुरस्कार प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में तैनात बलों के कमांडरों और मिशन प्रमुखों के नामांकनों में से चुना जाता है। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सैनिकों और पुलिस कर्मियों का सबसे बड़ा योगदान देने वाले देशों में शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महिला दल ने एवरेस्ट शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। ये उनका पहला अभियान था। 14 सदस्यीय दल में 11 महिला पर्वतारोही और 3 तकनीकी तथा सहायक कर्मचारी शामिल थे। एक रिपोर्ट।
2: इस दल ने 21 मई को नेपाल की ओर से दक्षिण कोल मार्ग से विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। अभियान को 19 अप्रैल को बल के मुख्यालय से रवाना किया गया था। स्वच्छ हिमालय ग्लेशियर बचाओ अभियान के अंतर्गत दल ने पर्यावरण जागरूकता गतिविधियां भी चलाई और एवरेस्ट क्षेत्र से गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा एकत्र किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस सफलता पर दल को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि दुर्गम भूभाग और कठोर परिस्थितियों में यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करके टीम ने बल के आदर्श वाक्य राष्ट्र सर्वोपरि को कायम रखा है। इस उपलब्धि के साथ बल ने अब तक 232 पर्वतारोहण अभियान पूरे कर लिए हैं। इनमें एवरेस्ट पर 5 सफल चढ़ाई शामिल हैं। बल ने एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, लोहत्से, धौलागिरी और मनालसू सहित दुनिया की 8000 मीटर से अधिक ऊंची 6 चोटियों पर भी चढ़ाई की है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता UCC की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल सचिवालय में वेबसाइट ucc.mp.gov.in का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक, राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन प्रस्तावित यूसीसी पर अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं। प्रतिक्रिया देने की अंतिम तिथि इस वर्ष 15 जून है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। हैदराबाद में कल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु की टीम निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर केवल 200 रन ही बना सकी। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 5 दिन में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में भी लू की चेतावनी जारी की है। आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म की अगली कड़ी में हम प्रसिद्ध वायलिन वादिका एन राजम से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद कनकलता। आरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का बयान अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, माता पिता में से कोई भी IAS अफसर तो बच्चों को आरक्षण क्यों। राजस्थान पत्रिका की ऐसी ही सुर्खी है। जनसत्ता लिखता है, मलाईदार तबके के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल। नीट पेपर लीक केस में एक और शिक्षिका की गिरफ्तारी हिंदुस्तान के पहले पृष्ठ पर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, तीसरी मनीषा फिजिक्स की एक्सपर्ट हुई गिरफ्तार। दैनिक भास्कर लिखता है

0: डिग्री के पार। जनसत्ता संपादकीय में लिखता है, इस बात पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए कि आखिर मैदानों के साथ अब पहाड़ भी क्यों तपने लगे हैं। मौसम विज्ञानियों का मानना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में वनों की अंधाधुंध कटाई, अवैज्ञानिक तरीके से खनन और पर्यटक वाहनों के बढ़ते दबाव से स्थानीय मौसम चक्र में बदलाव हो रहा है। ऐसे में अगर अब भी हम नहीं संभले तो निकट भविष्य में इसका परिणाम भयावह हो सकता है। एनसीईआरटी की 8वीं की किताब में न्यायपालिका पर विवादित चैप्टर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 शिक्षाविदों को ब्लैकलिस्ट से हटाया, दैनिक भास्कर में है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रुपए के अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की 4 दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to distribute over 51,000 appointment letters to new recruits in various government departments today. RBI approves record surplus transfer of 2.86 lakh crore rupees to central government for financial year 2025-26. US Secretary of State Marco Rubio arrives in Kolkata on his maiden 4-day visit to India to call on Prime Minister Modi in New Delhi this afternoon. IMD issues red alert for severe heat wave over East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh and Vidarbh today. Indian Army officer Major Abhilasha Barak honored with prestigious UN Military Gender Advocate of the Year Award 2025. And in IPL cricket, hosts Sunrisers Hyderabad beat Royal Challengers Bengaluru by 55 runs. Prime Minister Narendra Modi will distribute more than 51,000 appointment letters to newly recruited youth in various government departments and organizations at the 19th Rozgar Mela through video conferencing today. Mr. Modi will also address the gathering on the occasion. Our correspondent reports that the Rozgar Mela is a key initiative reflecting the Prime Minister's commitment to giving top priority to employment generation and turning this vision into reality.
3: Rozgar Mela is a step towards fulfillment of the Prime Minister's commitment to accord highest priority to employment generation. The Rozgar Mela is playing a significant role in providing meaningful opportunities to the youth for their empowerment and participation in nation building. Since its inception, around 12 lakh recruitment letters have been issued through 18 Rozgar Melas organized across the country. The 19th Rozgar Mela will be held at 47 locations across the country. The newly recruited candidates selected from across the country will be joining various ministries and departments, including Ministries of Railways, Home Affairs, Health and Family Welfare, and Department of Higher Education, among others. With Dipendra Kumar, Rishu Jaiswal, Akashwani News, Delhi.
2: The Reserve Bank of India, RBI, has approved a transfer of record 2.86 lakh crore rupees as surplus to the central government for the financial year 2025-26, marking one of the highest dividend payouts by the central bank. The decision was taken during the 623rd meeting of the Central Board of Directors of the RBI, chaired by Governor Sanjay Malhotra in Mumbai yesterday. The RBI in its release said its gross income increased by 26.42% during financial year 2025-26 compared to the previous year, while expenditure before risk provisions rose 27.60%. U.S. Secretary of State Marco Rubio arrived in Kolkata today on a 4-day visit to India. This is his maiden visit to India, marking an important step in strengthening bilateral ties between Washington and New Delhi. The visit is expected to focus on expanding cooperation in trade, defense, energy security,

0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। এতিয়া 12 বজাত হিন্দীত বাতৰি, 12:05 ইংৰাজীত বাতৰি, 12:10 পৰা সৈন্যবাহিনীৰ উদ্দেশ্যে প্ৰচাৰিত অনুষ্ঠান শুনিবলৈ পাব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মে লভলী নিগম। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 19वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा

0: कि देश दुनिया के विभिन्न देशों के साथ भी साझेदारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य देश के युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव देना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का एक भरोसेमंद सप्लाई चेन पार्टनर बन रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। श्री मोदी ने कहा कि हर भारतीय 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
1: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
0: ये रोजगार मेला पूरे देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया गया। पूरे देश से चुने गए ये नए उम्मीदवार रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग जैसे अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में शामिल होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1 लाख शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बैच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। श्री चौधरी ने कहा कि युवाओं को राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदार बनना चाहिए। जालंधर स्थित प्रवर्तन निदेशालय ने इंडियन कोऑपरेटिव हाउसिंग बिल्डिंग सोसाइटी के सचिव अजय सहगल को फर्जी सहमति पत्र जमा करके धोखाधड़ी से भूमि उपयोग परिवर्तन प्राप्त करने से संबंधित धन शोधन के मामले में गिरफ्तार किया है। ये जांच पंजाब पुलिस ने किसानों की शिकायतों के आधार पर FIR दर्ज की थी। विभाग की जांच में पता चला कि आरोपियों ने 15 भूस्वामियों की 30.5 एकड़ भूमि के संबंध में फर्जी सहमति पत्र तैयार किए थे। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देश भर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित है। इंडियन ऑयल ने बताया कि 1 मई से 22 मई की अवधि के दौरान कंपनी ने ईंधन की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। इस दौरान पेट्रोल की बिक्री में 14% जबकि डीजल की बिक्री में करीब 18% की वृद्धि हुई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 51 पैसे बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज CNG की कीमत में 1 रुपये तक की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम CNG की नई दर 81.09 रुपये हो गई है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज सवेरे कोलकाता पहुंचे। ये उनकी भारत की पहली यात्रा है। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध अधिक प्रगाढ़ होंगे। IPL क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Naresh Mako. Prime Minister Narendra Modi today distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government departments and organizations. The Rozgar Mela was held at 47 locations across the country. The newly recruited candidates selected from across the country will be joined

सैनिक भाई, हम अब से कुछ ही पलों में शुरू करेंगे आज के सुरमय गीतों का सुहाना सफर। लेकिन उससे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर।

अब से कुछ ही पलों में हम सुनेंगे पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत। 12:30 पर दैनिक कार्यक्रम आज का गीत। 12:38 पर हम सुनेंगे कार्यक्रम एक और अनेक। 1:05 पर हम सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

समाचार के बाद 1:10 पर हम सुनेंगे कार्यक्रम गुंजन, 1:40 पर प्रादेशिक संगीत, दिन के 2 बजे से मिड डे न्यूज और 2:15 से दोपहर समाचार।

समाचार के बाद 2:30 पर हम लेकर हाजिर होंगे आज के प्रसारण का अंतिम कार्यक्रम नजराना, और इन्हीं कार्यक्रमों के साथ आज के प्रसारण का समापन होगा दिन के 3:00। तो ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। सैनिक भाइयों, प्रस्तुत है आज के प्रसारण का पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत। पहला गीत आइए सुनते हैं उदित नारायण की आवाज में वीर जारा फिल्म से। बोल है जावेद अख्तर के और संगीत से सजाया है मदन मोहन ने।

सैनिक भाइयों, कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, राहत फतेह अली खान की आवाज में अनजाना अनजानी फिल्म से। बोल है विशाल डडलानी के और संगीत से सजाया है विशाल शेखर ने।

सैनिक भाइयों, फिल्म संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत अगला गीत आइए सुनते हैं गुरु फिल्म से हरिहरन और अलका याग्निक की आवाजों में। बोल हैं गुलजार के और संगीत से सजाया है AR रहमान ने।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।
1: जीएसटी काउंसिल ने बीमा पर लगने वाले 18% टैक्स को घटाकर जीरो कर दिया है। ऐसे में जीवन बीमा लेने वालों को अब सिर्फ इंश्योरेंस का प्रीमियम ही भरना होगा और इस पर कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों के लिए बड़ा फायदा है क्योंकि LIC को पहले से ही इनकम टैक्स में छूट मिली हुई है। वहीं अब GST भी हटने से बीमा लेना फायदे का सौदा होगा।
0: ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग्ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज और DRM फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर। सैनिक भाइयों, आइए सुनते हैं दैनिक कार्यक्रम आज का गीत। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे यस बॉस फिल्म का ये गीत अभिजीत और अलका याग्निक की आवाजों में।

0: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
1: ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्रागज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 280.9 मीटर, 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। सैनिक भाइयों, प्रस्तुत है अगला कार्यक्रम एक और अनेक, पर उससे पहले आइए एक नजर डालते हैं कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर।

हर दिन की तरह 12:10 पर हम हाजिर हो जाएंगे आपकी खिदमत में और सुनवाएंगे दिन का पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत। 12:30 पर दैनिक कार्यक्रम आज का गीत। 12:38 पर कार्यक्रम सब रंग। 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

1:10 पर कार्यक्रम गीतिका, 1:40 पर हम सुनवाएंगे शीर्षक संगीत, 2 बजे से अंग्रेजी और हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कल के प्रसारण का अंतिम कार्यक्रम होगा गीत अपना धुन पर आई, और इसी के साथ कल के प्रसारण का समापन होगा दिन के 3 बजे। तो ये थी कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की अग्रिम जानकारी।

सैनिक भाइयों, अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम एक और अनेक। पहला गीत आइए सुनते हैं ओम शांति ओम फिल्म से श्रेया घोषाल और अभिजीत की आवाजों में।

सैनिक भाइयों, कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, श्रेया घोषाल और उदित नारायण की आवाजों में, क्रिश फिल्म से। बोल है नसीर के और संगीत से सजाया है राजेश रोशन ने।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं एक और अनेक कार्यक्रम। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं बॉडीगार्ड फिल्म से राहत फतेह अली खान की आवाज में और साथ ही श्रेया घोषाल की।

सैनिक भाइयों, कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं विवाह फिल्म से श्रेया घोषाल और उदित नारायण की आवाजों में। गीत के बोल और संगीत हैं रविंद्र जैन के।

सैनिक भाइयों कार्यक्रम का अंतिम गीत आइए सुनते हैं, थ्री इडियट्स फिल्म से श्रेया घोषाल और सोनू निगम की आवाजों में।

इसी गीत के साथ एक और अनेक कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अब आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग्ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। सैनिक भाइयों, अब से आप हमारा ये प्रसारण डिब्रूगढ़ केंद्र से भी 529.1 मीटर पर सुन सकते हैं। सैनिक भाइयों, आइए सुनते हैं प्रसारण का अगला कार्यक्रम गुंजन। पहला गीत आइए सुनते हैं पुकार फिल्म से सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में। बोल है मजरू सुल्तानपुरी के और संगीतकार हैं ए आर रहमान।

गुंजन कार्यक्रम के अंतर्गत अगला गीत आइए सुनते हैं, विनोद राठौड़ और अलका याग्निक की आवाजों में, प्रेम ग्रंथ फिल्म से, बोल हैं आनंद बख्शी के और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

सैनिक भाइयों कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं कुमार सानू की आवाज में दीवाना फिल्म से। बोल है समीर के और संगीत से सजाया है नदिम श्रवण ने।

सैनिक भाइयों कार्यक्रम का अंतिम गीत आइए सुनते हैं, गज गामिनी फिल्म से कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में, बोल है माया गोविंद के और संगीत से सजाया है भूपेन हजारिका ने।

0: मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतीय देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
0: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
1: श्री मोदी ने नवनियुक्त कर्मचारियों को आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया।
0: कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है कि इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं।
1: 19वें रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को आज नियुक्ति पत्र सौंपे गए। संसदीय कार्य सूचना तथा प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि सरकार 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। चेन्नई स्थित ICF में आयोजित रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रोजगार के अवसरों और व्यापार में सुगमता के क्षेत्र में तीव्र प्रगति कर रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोजगार मेले के परिणाम स्वरूप पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से नियुक्तियों में वृद्धि हुई है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले में डॉक्टर सिंह ने कहा कि इस पहल ने समय सीमा का सख्ती से पालन किया है, जिससे युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है और योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया सुनिश्चित हुई है। उन्होंने मिशन कर्मयोगी प्रारंभ के विकल्प के बारे में भी बताया।
2: मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत आईगॉट प्लेटफॉर्म पर अभी तक 1,64,00,000 उम्मीदवार रजिस्टर हो चुके हैं और 4,776 से अधिक कोर्सेज उपलब्ध हैं। आज भी आपके द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त करते ही प्रत्येक उम्मीदवार को साथ ही साथ मिशन कर्मयोगी प्रारंभ का विकल्प भी प्रदान कर दिया जाएगा।
1: देशव्यापी रोजगार मेला कार्यक्रम के अंतर्गत आज पश्चिम बंगाल में 3 जगहों पर नए भर्ती हुए उम्मीदवारों को 185 नियुक्ति पत्र सौंपे गए। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें भाग लिया। केरला में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आज तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया रोजगार मेला केवल एक भर्ती अभियान से कहीं अधिक है और इसका उद्देश्य युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति में बदलना है। पंजाब में आज रेल कोच फैक्ट्री RCF कपूरथला और पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स पटियाला सहित 2 स्थानों पर रोजगार मेला आयोजित किया गया। यहां 281 नए लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि रोजगार मेला एक सशक्त राष्ट्रीय संस्था बन गया है जो पारदर्शिता और योग्यता आधारित समयबद्ध भर्ती सुनिश्चित करता है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। बिहार सरकार ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के सभी छात्रों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा की

0: बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ाकर कल तक कर दी है। सीबीएसई ने निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है, जिससे वेबसाइट बाधित हो रही थी। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। सीबीएसई ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे इस विस्तारित समय सीमा का सदुपयोग करें और प्रक्रिया को पूरा करें। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बैच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदार बनना चाहिए। श्री चौधरी ने कहा कि भारत एक विकसित राष्ट्र के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और एक विकसित आत्मनिर्भर तकनीकी रूप से उन्नत और विश्व स्तर पर सम्मानित राष्ट्र को बनते हुए हम सब देख रहे हैं।
0: राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर में आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया। यहां 1100 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय रोजगार मेले में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शामिल हुए। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार पूरे देश में युवाओं को पारदर्शी और समयबद्ध रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
2: रेलवे में आज करीब करीब 1,60,778 भर्तियों पे काम चल रहा है। पहले 8-8, 10-10 साल में एक बार भर्ती निकलती थी या 4-4, 5-5 साल में एक बार भर्ती निकलती थी। कांग्रेस का वो युग था। मोदी जी ने जब जिम्मेदारी ली तो उस समय को कंप्रेस किया।
0: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र प्रशासन को जनगणना कार्य के लिए निजी गैर सहायता प्राप्त और अल्पसंख्यक विद्यालयों के लिए शिक्षकों को तैनात करने से रोक दिया है। न्यायमूर्ति गौतम अखंड और न्यायमूर्ति संदेश पाटिल की खंडपीठ ने पाया कि जनगणना अधिनियम और नियमों के अंतर्गत शिक्षकों पर जनगणना संबंधी कार्य करने का कोई दायित्व नहीं है। न्यायालय ने राज्य भर में 500 से अधिक विद्यालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्यालय संघों को अंतरिम राहत प्रदान की है। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देश भर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में ये तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपए प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी की कीमत में 1 रुपए की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 81.09 रुपए हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। वे मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री कल विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। उत्तरी चीन के शानकसी प्रांत में किनयुआन काउंटी में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट के कारण मरने वालों की संख्या 82 हो गई है। ये गैस विस्फोट कल सुबह ल्यूशेन्यू कोयला खदान में हुआ। बचाव कार्य जारी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने दुर्घटना के बाद की स्थिति से निपटने के लिए उचित कदम उठाने का आह्वान भी किया है। बांग्लादेश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ती हिंसक घटनाओं पर यूनिसेफ ने गहरी चिंता जताई है। सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया गया है। कल जारी एक बयान में बांग्लादेश में यूनिसेफ के प्रतिनिधि राणा फ्लावर्स ने कहा कि संगठन उन स्थानों पर बच्चों के साथ दुष्कर्म और हत्या के हालिया मामलों से बेहद आहत और दुखी है। विश्व

0: स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला बुंजीबुगियो स्ट्रेन से उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे को राष्ट्रीय स्तर पर उच्चतम कर दिया है। एक रिपोर्ट।
1: विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर यह खतरा बहुत उच्च, क्षेत्रीय स्तर पर उच्च और वैश्विक स्तर पर निम्न है। उन्होंने बताया कि इस संक्रमण के अब तक 82 मामले सामने आए हैं और 7 लोगों की मौत हो चुकी है। संगठन ने पहले इस प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। साथ ही ये स्पष्ट किया था कि ये महामारी के स्तर पर नहीं है। इबोला एक वायरल बीमारी है जो चमगादड़ों से फैलती है और संक्रमित व्यक्तियों या जानवरों के शरीर के तरल पदार्थों या दूषित वस्तुओं के सीधे संपर्क से फैलती है। दुर्लभ मामलों में हवा के माध्यम से भी ये बीमारी फैल सकती है। इसका ऊष्मायान काल 2 से 21 दिनों तक होता है, जिसके शुरुआती लक्षणों में बुखार, थकान, मांसपेशियों में दर्द और गले में खराश शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री नवीन के नए विचार, जोशीले नेतृत्व और संगठन के काम तथा प्रशासन दोनों की गहरी समझ ने उन्हें हर जगह बहुत सम्मान दिलाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हराया था। मौसम विभाग ने कल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली का आज अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। बिहार सरकार अगले 5 वर्ष में राज्य में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती करेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन और बढ़ाकर कल की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबिया आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंजीबुगियो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: समाचार के बाद एक बार फिर स्वागत है आज के प्रसारण में।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्रागज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। सैनिक भाइयों, आइए सुनते हैं आज के प्रसारण का अंतिम कार्यक्रम नजराना। कार्यक्रम के अंतर्गत पहला गीत आइए सुनते हैं लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में सिलसिला फिल्म से। बोल हैं जावेद अख्तर के और संगीतकार हैं शिव हरे।

सैनिक भाइयों, कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं। गुमराह फिल्म से महेंद्र कपूर की आवाज में, बोल है साहिर लुधियानवी के और संगीत से सजाया है रवि ने।

0: सैनिक भाइयों, नजराना कार्यक्रम के अंतर्गत अगला गीत आइए सुनते हैं कश्मीर की कली फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में।
1: दुनियाओं से जमाना उसी का मोहब्बत में जो गया हो किसी का है दुनिया।

सैनिक भाई, अगला गीत आइए सुनते हैं कर्ज फिल्म से मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में। बोल है आनंद बख्शी के और संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

सैनिक भाइयों, अगला गीत आइए सुनते हैं। कटी पतंग फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में, बोल हैं आनंद बख्शी के और संगीत से सजाया है राहुल देव परमन ने।

0: इसी गीत के साथ नजराना कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।
1: यदि आप अब कोई नई कार या बाइक लेने की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको काफी किफायती दामों पर उपलब्ध होगी। जीएसटी परिषद ने छोटी कारों 350 सीसी तक की बाइक और तिपहिया वाहनों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया है। 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाला ये त्योहारी तोहफा एंट्री लेवल गाड़ियों को और भी किफायती बना देगा, जबकि लग्जरी कारें और बड़ी बाइक 40% के नए स्लैब में आ गई हैं, लेकिन फिर भी उन पर कम टैक्स लगेगा।
0: सैनिक भाइयों, इसी के साथ समाप्त होता है हमारा आज का प्रसारण। कल दोपहर 12:10 पर फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मैं अंशु झा लेती हूँ आपसे विदा। जय हिंद।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।

0: आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है। नमस्कार, रेडियो डॉक्टर में आपका हार्दिक स्वागत। मैं हूं शालिनी मित्तल और शुरू हो गया है आपका पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर, जो रखता है आपके स्वास्थ्य का ख्याल। और गर्मियां बहुत पड़ रही हैं, भीषण गर्मी है और इस गर्मी का प्रभाव हमारे शरीर के हर अंग पर पड़ता है। आज हम बात करेंगे गर्मी का प्रभाव हमारी आंखों पर कैसे पड़ सकता है। जी हाँ, आज का यही हमारा विषय है, समर्स एंड आई केयर, गर्मियों में हम अपनी नेत्र रक्षा कैसे करें। और आज के हमारे रेडियो डॉक्टर हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर मानवदीप सिंह, आप प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थल्मोलॉजी डॉक्टर आरएलएमएल हॉस्पिटल नई दिल्ली में। तो सबसे पहले हम डॉक्टर साहब का स्वागत करें। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के एफएम के स्टूडियो में आपका।
1: शुक्रिया, नमस्कार।
0: तो डॉक्टर साहब, विषय बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे श्रोता जो हैं इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ते हैं और अपनी समस्याओं को हमारे विशेषज्ञ के सामने रखते हैं और हमारे विशेषज्ञ उनका समाधान करते हैं। तो आज भी हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारे सारे श्रोता हमसे अब तक जुड़ गए होंगे। पर सबसे पहला प्रश्न मैं पूछ रही हूं डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर, गर्मियां बहुत हैं और इन गर्मियों में आंखों की आम समस्याएं क्या होती हैं, ये भी जानना चाहूंगी। और साथ ही साथ एक नॉर्मल आंखों की क्या

0: समस्याएं होती हैं, कुछ खासतौर पर गर्मियों में बढ़ जाती होंगी, तो मैं दोनों जानना चाहूंगी आपसे।
1: देखिए, गर्मियों के अंदर एक तो मौसम खुश्क होता है, आजकल अभी बारिश वगैरह नहीं शुरू हुई है, तो बारिश के बाद तो जैसे संक्रमण बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अभी खुश्की आंखों में बढ़ जाती है, ड्राई आईज जैसे वो बढ़ जाती है। बच्चों के अंदर जो मार्च अप्रैल से ही शुरू हो जाता है, एक वर्नल केराटोकंजंक्टिवाइटिस जिसको बोलते हैं, एलर्जिक कंडीशन होती है, वो होते हैं। बाकी खेती में जब काम करते हैं तो आंख के अंदर आजकल चोट वगैरह जो है, आंख के अंदर कुछ भी जो है कटाई वगैरह जैसी होती है, तो वो आंख के अंदर लगने का खतरा रहता है। और इसके अलावा जो है आंखों को धूल मिट्टी से फॉरेन बॉडी के आंख के अंदर गिरना, वो सभी सीजन में ज्यादा होता है, क्योंकि आंधीबाजी चलती है,
0: आंधी चलती है। और बहुत गर्मी जब होती है तो भी अलग अलग तरह के चश्मे लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी हम जानेंगे कि किस तरह के चश्मे होने चाहिए, किस तरह की यूवी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। हम लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और लौटते हैं।

0: जी हाँ, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, और कवि और हमारे जो फिल्मकार हैं और जो लिरिक्स राइटर्स जो होते हैं, गाने जो लिखते हैं डॉक्टर साहब, उन्होंने आंखों की खूबसूरती और आंखों की सुंदरता पे बहुत गाने रचे हैं। तो हम आपकी पसंद का भी गाना बजाएंगे, तो क्या कहना चाहते हैं अब, क्योंकि एक बहुत डेलिकेट ऑर्गन है और बहुत जरूरी ऑर्गन है जिससे हम दुनिया को देखते हैं। तो गर्मियां जब बहुत ज्यादा पड़ती हैं तो यूवी रेज भी होती हैं जो बहुत हार्मफुल होती है, तो कैसे बचाव किया जाए सर?
1: देखिए, यूवी रेज से बचने के पहले तो यह है कि आप जब धूप में जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो यूवी प्रोटेक्टेड गॉगल्स पहनने चाहिए। जो गॉगल्स हैं जो बहुत सस्ते ये रेलवे प्लेटफॉर्म वगैरह पे मिलते हैं, उनके अंदर यूवी प्रोटेक्शन नहीं होती। तो आप अगर गॉगल्स खरीदने जाते हैं, किसी दुकान से खरीदते हैं, कोई भी ब्रांड का हो, ब्रांड से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके पास मशीन होती है चेक करने की, तो आप देखो कि उसके अंदर 99% यूवी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। आप उसको बोलिए चेक करके दिखाइए हमें।
0: अच्छा, उसको चेक करने का कोई अलग इंस्ट्रूमेंट होता है?
1: मशीन होती है अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्शन कितनी है तो वो लीजिए। दूसरा जो है, आपको आंख को धोते रहना चाहिए। आंख के अंदर बहुत तेज धूप के अंदर आप कम निकले बाहर, जो डे के बिल्कुल जो पीक आवर्स होते हैं सुबह 10-11 से लेकर 3-4 बजे तक, अवॉइड करें बाहर जाना। और आंखों को अगर आप, स्पेशली अगर आप टू व्हीलर चलाते हैं, तो उसके बाद बेशक आप 2 किलोमीटर भी चले, उसके बाद आंखों को धोइए। तो ये सब चीजें जो है गर्मी के अंदर आपको आंखों को बचाव करके रखती है
0: जी। तो खाली सादे पानी से धोना ठीक रहता है कि उसमें कुछ मिलाकर धोया जाए?
1: नहीं, साफ पानी होना चाहिए, बस सादा पानी
0: तो वो ठीक रहता है।
1: हाँ जी, हाँ जी
0: जी। तो जब बाहर जाएं और बाहर से अंदर आएं घर

0: में, तो दोनों समय इसको अपने आंखों को धोना चाहिए।
1: बाहर से जाने के टाइम कोई खास जरूरी नहीं होता, लेकिन जो ही बाहर से अंदर आते हैं, क्योंकि जाने अनजाने में कुछ भी हो, आपकी आंख में थोड़ी बहुत तो धूल मिट्टी गर्मी में जाएगी ही। स्पेशली जब अगर आप टू व्हीलर चलाते हैं तो उस वक्त आपकी आंख में जरूर कुछ ना कुछ जाता है।
0: जी जी। तो हमारे श्रोता फोन लाइन से जुड़ गए हैं, डॉक्टर साहब पहले इनकी समस्या सुन लेते हैं।
1: हाँ जी।
0: हेलो।
2: जी हेलो।
0: जी
2: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार
2: डॉक्टर साहब, चादर कर रहा हूँ।
0: जी डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आप?
1: हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार जी, बताइए।
2: मैं मंगोलपुरी दिल्ली से बोल रहा हूँ।
1: हाँ जी हाँ जी
2: जी। मैं सर बोल रहा हूँ कि मैं जब सिलाई करता हूँ, सिलाई का काम करते हैं।
1: हाँ जी।
2: तो इसमें मतलब आँख का बचाव कैसे करें?
1: आपकी उम्र कितनी है?
2: जी उम्र जी 28 वर्ष हो रहे हैं।
1: आपको कुछ भी नहीं करना, अगर आपको ठीक दिखाई देता है तो आप बिल्कुल काम करते जाइए, बेफिक्र रहिए, जितना मर्जी काम कीजिए। बस ये सीधा जैसे गर्मी के मौसम में खास तौर पे पंखे के सामने, एसी के बिल्कुल सामने मत बैठिए, और कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और
2: आंख लाल हो जाते हैं सर।
1: देखिए लाल अगर हो जाती है तो आपको आंख को धो सकते हैं फ्रीक्वेंटली, दिन में 4-5 दफा धोएं। तो उससे नहीं ठीक होता तो फिर आपको लाली का जो कारण एलर्जी हो सकती है, कुछ और समस्या हो सकती है, तो फिर वो आपको तो दिखाना पड़ेगा डॉक्टर को, देख के ही बताया जाएगा।
0: जी डॉक्टर साहब, आपने बताया था कि पानी से आंखों को धोना ठीक रहता है जब हम बाहर से आए धूल मिट्टी के लिए। हमारे एक श्रोता हैं अरविंद, ये यमकेश्वर डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से मैसेज भेजकर हमसे पूछ रहे हैं कि बताइए कि क्या ड्राई आइस में कचरा गिरने पर पानी से धोना चाहिए कि नहीं?
1: बिल्कुल धोना चाहिए। पहला स्टेप तो हर चीज के लिए पानी से धोना ही है, और अगर आपकी आंख में कचरा गिर गया है और वो पानी धोने से नहीं निकला तो वो आपको रड़कता रहेगा, जैसे आंख के अंदर आपको फॉरेन बॉडी सेंसेशन जिसको बोलते हैं वो रहेगा। और अगर रहता है तो फिर आप उसके लिए इंतजार मत कीजिए, आप इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि जो चीज आंख के अंदर गिर गई है अगर उसको इमीडिएटली नहीं निकाला जाएगा तो फिर वो इन्फेक्शन हो जाता है, उसका संक्रमण हो जाता है और उससे नजर के ऊपर असर पड़ सकता है जो कि ता जिंदगी रहेगा, तो इसलिए उससे बचना चाहिए।
0: तो ये कैसे डॉक्टर साहब पता लगेगा उन्हें कि इस समय हमें जाना चाहिए? मतलब पेन होगा क्या, कैसे?
1: पेन तो जरूरी नहीं है, पेन तो थोड़ा देर में आता है, लेकिन आंख के अंदर अगर कुछ पड़ा होगा तो एकदम से कोई मिस नहीं कर सकता उसको।
0: जी जी, किरकिराहट,
1: किरकिराहट उसको रहेगी।
0: जी, जी,
1: रहेगी।
0: जी हमारे एक श्रोता है, इन्होंने नाम नहीं लिखा है पर उन्होंने लिखा है गर्मियों में आंखों की क्या विशेष देखभाल करें। तो हम बता दें आपको कि आज पूरा ही कार्यक्रम हमारा इसी पर केंद्रित है, तो आप कंप्लीट हमारा पूरा 4 बजे तक ये कार्यक्रम सुनिए और आपको पता चलेगा, क्योंकि आज का विषय ही हमारा ये है समर्स एंड आई केयर। ये मैसेज हमें भेजा है नेहा ने मुंबई से, प्लीज सजेस्ट अ गुड आई ड्रॉप फॉर ड्राई आईज, ये इन्होंने पूछा है। नाम तो हम नहीं लेते हैं किसी पर, ड्राई आईज की जो समस्या है डॉक्टर साहब ये क्या बढ़ जाती है गर्मियों में?
1: देखिए ऐसा है, ड्राई आईज की समस्या गर्मी में थोड़ी सी बढ़ती तो है ही, लेकिन जितना ड्राई आईज का शोर है समाज के अंदर, मुझे लगता है ये काफी इंडस्ट्री ड्रिवन है, इतनी ड्राई आई नहीं होती है। ड्राई आई है
0: जी।
1: और गर्मी में बढ़ती है लेकिन इतनी नहीं है जितना इसका शोर होता है। तो इससे बचने के लिए आई ड्रॉप्स जो है, लुब्रिकेंट ग्रुप के आई ड्रॉप्स होते हैं, वो बहुत सारी कंपनियां बनाती है, लगभग हर कंपनी बनाती है, और उसको आप यूज कर सकते हैं। और ड्राई आईज के लिए अगर किसी को बहुत ज्यादा है, जो जैसे जोड़ों के दर्द वगैरह, रूमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह के साथ जो ड्राई आई होती है वो काफी ज्यादा सीरियस होती है, उसके लिए डॉक्टर को कंसल्ट करना बेहद जरूरी होता है। और उसमें साइक्लोस्पोरिन ए वगैरह कुछ ऐसी सीरियस दवाइयां होती हैं जो कि देनी पड़ती हैं।
0: तो ये ड्राई आईज पहली बात की होती क्यों है, और आपने कहा कि आजकल बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा है, तो क्या लैपटॉप का ओवर यूज, फोन का ओवर यूज ये कारण है कि कुछ और कारण है?
1: पहला कारण तो इसका है, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं गलत हो सकता हूँ, कि ये इंडस्ट्री ड्रिवन है।
0: अच्छा, वो आपने कहा जी।
1: ड्राई आईज जो है अक्सर जो होती है वो लेडीज में होती है, जब महामारी खत्म होती है उसके बाद जो है ड्राई आईज ज्यादा हो जाती है। और जो है इसके अलावा लैपटॉप का यूज वगैरह से क्या होता है कि वो टेम्परेरी ड्राई आई होती है, वो परमानेंट नहीं होती है। क्या होता है कि जब हम कोई भी स्क्रीन को देखते हैं तो हमारा ब्लिंक रेट जो है झपकने का आंख को, वो जो है नॉर्मली जो 13-14 होता है वो कम रह जाता है, वो 8-10 रह जाता है। तो उससे जो आंख के जो आंसू होते हैं बाहर, जिनकी लेयर बनी होती है, टीयर फिल्म जो होती है, वो पूरी तरह से वो मूवमेंट नहीं होती उसके अंदर, तो वो खुश्की आने लगती है। दूसरा क्या है कि हम आंखें ज्यादा चौड़ी खोल के रखते हैं जब आप स्क्रीन को देख रहे हैं, स्पेशली जब कंप्यूटर को देख रहे होते हैं तो आंख को बहुत ज्यादा खोल के रखते हैं, तो उससे जो है
0: नुकसान करता
1: है, इवेपोरेशन हो जाती है।
0: अच्छा,
1: उड़ जाते हैं टीयर्स जो है इतने। अच्छा, थोड़े से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से
0: बड़ा बढ़ जाता है तो
1: सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो वो उड़ जाते हैं, तो उससे टेम्पररी ड्राइनेस होती है।

0: ये कोई बीमारी नहीं होती है, ये तो नॉर्मल एक बॉडी की रिस्पॉन्स है। तो इसके लिए आपको आंखों को थोड़ी थोड़ी देर में बंद कर लेना चाहिए, पूरा टाइट बंद कर लेना चाहिए, थोड़ी देर के बाद फिर खोल ले, काम करने लगे और फिर बाहर अगर आपके कमरे के अंदर खिड़की वगैरह है तो खिड़की से बाहर थोड़ा दूर देखें, फिर से काम करें। और अगर आपको फिर भी ज्यादा अगर कुछ सिम्टम्स आने लगे तो फिर आप जो है लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स यूज कर सकते हैं
1: जी। और ये जो लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स यूज करते हैं तो इसकी भी कोई फ्रीक्वेंसी होती है डॉक्टर साहब, कि दिन में कितनी बार यूज
0: नहीं
1: करें?
0: अगर किसी को स्पेसिफिक कोई बीमारी नहीं है तो दो तीन दफा काफी होता है, मैक्सिमम ज्यादा की जरूरत नहीं है।
1: हमारे एक श्रोता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं।
2: हेलो।
1: हेलो,
2: हाँ जी नमस्ते मैम।
1: जी नमस्ते।
2: हाँ जी, एस चट्ठा बोल रहा हूँ, डॉक्टर साहब को भी नमस्ते।
0: नमस्ते जी,
1: जी। चट्ठा जी अपना प्रश्न करें।
2: हाँ डॉक्टर साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि समर में जैसे आप बता रहे हैं आई की केयर के बारे में, नॉर्मल व्यक्ति जिसको कोई प्रॉब्लम ना हो और जिसका कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ हो, तो उन दोनों में क्या क्या अलग से कोई प्रिकॉशन करना चाहिए?
0: नहीं जी, कोई अलग से प्रिकॉशन नहीं है, दोनों के लिए सब ठीक होता है। जैसे बाकी सबके लिए हम बात कर रहे हैं, जो पूरे प्रोग्राम में आप सुन रहे हैं और सुनते रहेंगे, वैसे ही सबके लिए, बेशक ऑपरेशन हुआ हो या ना हुआ हो।
1: जी हमें हमारी श्रोता ने लिखकर भेजा है, जिनका मैंने प्रश्न मैसेज पे लिया था कि गर्मियों में क्या विशेष देखभाल चाहिए। अपना नाम उन्होंने लिखकर भेजा है, मान्या सिंह है उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ से। इन्होंने ये भी लिखा है कि ज्यादा देर तक ध्यान केंद्रित करने पर आंखें गर्म हो जाती हैं तो क्या करें, जैसे पढ़ाई करने पे या टीवी देखने पे। तो आपने काफी कुछ तो डॉक्टर साहब अभी बताया कि थोड़ा रेस्ट देना चाहिए उन्हें,
0: रेस्ट देना चाहिए। और अगर आपको गर्मी में ज्यादा आपको दिक्कत होती है, आपके घर में कोई कूलिंग का सिस्टम नहीं है, तो आप थोड़ी सी बर्फ सूती कपड़े में लेकर आंख के ऊपर लगा सकते हैं।
1: अच्छा, ठंडी सिकाई टाइप की। जी। सुशील ठाकुर हमें लिख रहे हैं, कहां से लिख रहे हैं ये तो नहीं बता रहे हैं, पर इन्होंने लिखा है मेरे आंखों में पानी गिरता है आंखों से और कंटिन्यूस रहता है ये ऐसे आंखों से गिरना, और 5 साल से ऐसा हो रहा है। तो इनको कुछ आप बताना चाहेंगे कि क्या विशेष ये करें?
0: इनकी उम्र नहीं पता,
1: उम्र तो आप अगर हमें सुन रहे हैं सुशील जी तो हमें मैसेज करके उम्र भी लिखें। डॉक्टर साहब जानना चाहते हैं कि आपकी उम्र कितनी है, और हम ये फिर प्रश्न बाद में ले सर फिर।
0: नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा। जो जिस जैसे ये मेल है और उम्र मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा होगी। एक तो ये होता है कि पानी अगर आंखों में आता है, सबसे पहली चीज जो हमने एक्सक्लूड करनी होती है वो है कि कोई रास्ता तो नहीं बंद, क्योंकि नॉर्मली जो आंसू है आंख की सफाई के बाद वो एक छेद होता है आंख के अंदर, उस छेद के जरिए जो आईलिड्स के अंदर होता है उसके जरिए वो नाक में चले जाते हैं, और ये 24 आवर सब में चलता रहता है। तो अगर वो बाई चांस किसी कारणवश, स्पेशली अगर नाक की कोई किसी को एलर्जी वगैरह रहती है, तो उससे वो रास्ता कई बार बंद हो जाता है, तो आंसू जो है वो अपने नॉर्मल तरीके से ड्रेन नहीं हो पाते, तो ये इसको एक्सक्लूड करना जरूरी होता है। दूसरा कि अगर किसी को एलर्जी वगैरह अगर होती है तो उससे भी पानी लगातार आता रहता है। इसके अलावा अगर किसी को चश्मे की जरूरत हो लेकिन वो चश्मा ना लगाए, आंखों पे जोर पड़ता है, उससे भी पानी आने लगता है। और इसके अलावा ड्राइनेस जब किसी को ज्यादा हो जाती है तो कई बार उससे भी रिएक्टिव टीयर सिक्रीशन बढ़ जाता
1: है। ड्राइनेस में भी,
0: ड्राइनेस से भी कई बार जो है पानी बढ़ जाता है। तो ये सब चीजें हैं जो कि एक इंडिविजुअल को चेकअप से ही पता लगेगी।
1: जी जी, तो आप जरूर नेत्र एक विशेषज्ञ के पास जाइए और चेकअप कराइए सुशील जी, तो सही जो कॉज है वो पता लगेगा, तो फिर इसका इलाज किया जा सकता है। ये हमें लिखकर भेजा है उमेश कुमार ने खयाला से, और ये लिख रहे हैं कि आंखों में कभी कभी पानी आता है और पलकों में कभी खुजली भी होती रहती है, ये जानना चाह रहे हैं।
0: ये चीजें गर्मी के अंदर नॉर्मल होती है और एलर्जी होती है, इनके सिर्फ पानी से धो लेना चाहिए और ठंडे पानी से और ठंडी सिकाई करनी चाहिए। मेरा ख्याल है ऐसे में किसी दवाई वगैरह की जरूरत अक्सर नहीं होती है।
1: जी ओम प्रकाश खंडेलवाल जी हमें लिख रहे हैं मैसेज के जरिए, डॉक्टर साहब इनकी उम्र 62 ईयर्स है और ये कहते हैं कि मोबाइल देखते समय 20 मिनट बाद मैं पलक झपकता हूँ, तो आंखों में ऐसा लगता है कि आंखों में कुछ गिर गया है या ऐसा लगता है ऐसे पानी आ रहा है आंखों में, तो ये क्या ज्यादा देखने के कारण होगा?
0: ये सब ज्यादा देखने की वजह से है, और जब मैंने बताया कि ब्लिंक रेट कम हो जाता है, ये कह रहे हैं कि मैं 20 मिनट तक झपकता हूँ उसके बाद ज्यादा झपकता हूँ, तो ये एकदम बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी, आपको ज्यादा झपकना चाहिए आंखों को, बीच बीच में जोर से बंद भी करना चाहिए, और इतना कंटिन्यूस आप मोबाइल मत देखिए, क्योंकि इससे तो फिर आपकी टेम्परेरी ड्राइनेस जो है वो बार बार करने से, ऐसे रहने से परमानेंट में कन्वर्ट हो जाएगी, तो फिर वो मत कीजिए। थोड़ा स्क्रीन टाइम कम कीजिए, वैसे भी आपकी उम्र 62 साल हो चुकी है, तो आपको थोड़ा सा कम कीजिए इस चीज को।
1: और मुझे लगता है डॉक्टर साहब ये तो सबके लिए आपकी समझाइश होगी, क्योंकि बच्चे भी बहुत देखते हैं आजकल मोबाइल पे, कंटिन्यूस खेलते रहते हैं वो गेम्स, तो उन्हें भी ब्रेक लेना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों को हाथ में, छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल देना तो एक बहुत ही खतरनाक चीज है। उनको सिर्फ ये नहीं होती, ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, उनका चश्मे का नंबर लग जाता है।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: वेलकम बैक। आप हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में और आज का हमारा विषय समर्स एंड आई केयर, गर्मियों में नेत्र सुरक्षा कैसे करें। हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मानवदीप सिंह, आप नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, प्रोफेसर हैं डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल नई दिल्ली में, और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त शालिनी मित्तल। हमारे एक श्रोता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं डॉक्टर साहब। हेलो।
2: हेलो
1: जी,
2: प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव शालिनी मित्तल जी को रघुविंदर सिंह का नमस्कार।
1: नमस्कार जी, आप प्रश्न करें, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आपको।
2: डॉक्टर साहब को सादर प्रणाम।
3: प्रणाम जी।
2: डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल ये है कि आपने बताया कि गर्मियों में धूप में टू व्हीलर ड्राइव करते वक्त यूवी प्रोटेक्टेड गॉगल्स लगाने चाहिए, लेकिन जिन लोगों को नजर का चश्मा लगा हुआ है दूर और पास का, उनको आप क्या एडवाइस करेंगे? नंबर टू, जो ये हम आई ड्रॉप डालते हैं उसको केमिस्ट ये बताते हैं इसको खोलने के बाद इसकी वैलिडिटी सिर्फ एक मंथ तक है, कुछ ऐसे आई ड्रॉप भी आते हैं जिनकी शेल्फ लाइफ काफी टाइम तक होती हो, कृपया बताने का कष्ट कीजिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद जी डॉक्टर साहब।
3: पहले मैं आखिरी सवाल का जवाब दूंगा कि शेल्फ लाइफ जो है ये ना एक्चुअली लीगल रिक्वायरमेंट है उनका लिखना कि एक महीने के अंदर जो है दवाई खराब हो जाती है। ये उस जमाने में होता था जब शीशे की शीशियां होती थी जो ग्लास की बनी होती थी और उसके ऊपर प्लास्टिक के ढक्कन होते थे तो वो टूट जाते थे तो उससे इन्फेक्ट हो जाता था। आजकल जो है हालांकि लिखा तो कानूनी तौर पे ये होता है कि एक महीने के अंदर ही इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आप दवाई को फ्रिज में रखते हैं और आपकी दवाई की शीशी जो है टूटती फूटी नहीं है, ढक्कन इधर उधर गिरता नहीं

0: है तो आप उसको सेफली 1.5-2 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी दवाई को। बाकी कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिनका की पैकिंग ही बहुत ही एक्सपेंसिव और बढ़िया पैकिंग होती है, उनके ऊपर लिखा होता है कि इनको 2 या 3 महीने तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। दूसरा आपने सवाल पूछा था कि अगर आप, मैंने ये बोला था कि 2-व्हीलर को अगर चलाते हैं तो चलाने के बाद इमीडिएटली आंख को धो लें। मैंने ये नहीं कहा था कि 2-व्हीलर को चलाते समय काला चश्मा लगाएं, वो कोई भी चश्मा लगा सकते हैं। आप अगर हेलमेट पहनते हैं तो हेलमेट को आगे से कवर कर सकते हैं वाइजर से, उससे आंख के अंदर धूल मिट्टी नहीं जाएगी। और अगर आप चश्मा कोई लगाते हैं नजर का तो वो नॉर्मल चश्मा लगाएं आप, वो आप फोटोक्रोमेटिक भी लगा सकते हैं अगर आप लेना चाहें तो। वो फोटोक्रोमेटिक लेंसेज जो होते हैं वो अंदर सफेद हो जाते हैं और धूप में जाने पे काले हो जाते हैं, तो वो थोड़ा सा हेल्प करते हैं।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न करने के लिए। डॉक्टर साहब आपने बताया कि चश्मा जरूर लेकिन लगाएं, अच्छा क्वालिटी का चश्मा, यूवी प्रोटेक्ट जो करे वैसा चश्मा लगाएं। पर कई बार ये होता है जब बहुत गर्मी होती है तो चश्मा लगाते हैं तो नाक के आसपास थोड़ा पसीना जैसे आता है, फेस पे पसीना आ जाता है, तो उससे कभी कभी स्किन एलर्जी भी हो जाती है, तो इस पे क्या करें, किस तरह का सॉल्यूशन?
0: देखिए ये सारा ना फ्रेम के ऊपर डिपेंड करता है। चश्मे का जो फ्रेम होता है, जो मेटल फ्रेम्स होते हैं ना, कई किस्म के मेटल होते हैं, एक मेटल होता है और मेटल के ऊपर एक्रेलिक की उसके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग होती है, वो तो ठीक रहता है। लेकिन अगर आप देखने में मतलब ज्यादा सुंदर लगना है, कई लोग जो है ज्यादा पतला चश्मा पसंद करते हैं, तो डंडी जो होती है उसकी वो मेटल की होती है, तो वो डायरेक्ट टच करती है स्किन के साथ, उससे एलर्जी होती है। जनरली जो हम रिकमेंड करते हैं कि डंडी या तो वो प्लास्टिक से एक्रेलिक से कवर्ड होनी चाहिए या एक्रिलिक की ही होनी चाहिए।
1: अच्छा।
0: तो वो जो है उससे स्किन एलर्जी नहीं होती है, और अगर होती है किसी को तो फिर आपके पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय चश्मा बदलने के।
1: हमारी श्रोता हैं अदिति, वेस्ट दिल्ली में रहती हैं और इन्होंने लिखा है कि इनकी उम्र 25 साल है। इनका प्रश्न है कि आंखों के नीचे की स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, इसके लिए क्या बताएंगे आप? स्किन के लिए ही बात कर रही हैं कि आंखों के नीचे की बहुत डेलिकेट स्किन होती है।
0: डेलिकेट स्किन होती है तो ये जो है ना, अगर आप कोई भी अच्छा मॉइस्चराइजर वगैरह यूज कर सकते हैं अगर आपको ऐसी स्किन की ड्राइनेस की है, और अगर आपको फिर भी तकलीफ रहती है कोई भी आप, तो फिर आप स्किन के डॉक्टर से मिलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
1: जी बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं लेकिन जनरल आईज की प्रॉब्लम्स पे आ रहे हैं, अगर हमारे पास समय रहेगा हम जरूर उनको शामिल करेंगे, लेकिन अभी हम फिलहाल गर्मी पर ज्यादा केंद्रित कर रहे हैं अपने प्रश्नों को कि गर्मी में हम आंखों की सुरक्षा कैसे करें। तो जो आपने चश्मे का बताया डॉक्टर साहब, एक और समस्या होती है जैसे आंखों में कोई परेशानी हुई तो डॉक्टर्स जनरली स्टेरॉइड्स दे देते हैं, तो उसका कुछ फर्क होता है? गर्मियों में ज्यादा नुकसानदायक होती है या स्टेरॉइड्स लेने चाहिए?
0: देखिए स्टेरॉइड जो है वो किसी स्पेसिफिक अगर बीमारी ऐसी हो जिसके अंदर स्टेरॉइड जरूरी है वो तो जरूरी है, लेकिन स्टेरॉइड्स का हमारे यहाँ ना हमारे देश में बहुत ज्यादा ओवर द काउंटर मिल जाती हैं, जो कि बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड यूज होना चाहिए इनका। और खास तौर पे मैं बताना चाहूंगा बच्चों में एक एलर्जी की बीमारी होती है जिसको हम टेक्निकली बोलते हैं वर्नल किरेटो कंजंक्टिवाइटिस, और उसको साधारण भाषा में स्प्रिंग कटार बोला जाता है। उसके अंदर आंखों में पानी बहुत आता है, खुजली होती है, बच्चे की आंखें बंद होने लगती हैं थोड़ी थोड़ी, और देखने में जो सफेद वाला हिस्सा है आंखों का वो तो उसमें पीलापन आने लगता है। लेकिन इन सभी चीजें किसी भी चीज से, ये बीमारी कितनी भी हो, इससे नजर खराब नहीं होती। लेकिन अगर इसके लिए जो इलाज होता है वो स्टीरॉयड यूजेज होता है, लेकिन स्टीरॉयड यूजेज हम बिल्कुल जब बहुत ज्यादा तकलीफ है थोड़े दिनों के लिए, 10-15 दिन के लिए देते हैं। और बड़े कॉमनली ये होता है कि लोग सोचते हैं कि अरे ये तो दवाई ड्राम बाण है, ये तो बस ठीक हो गए, अब इसको डालते रहो, 4-6 महीने डालते रहते हैं। उससे होता क्या है कि बच्चे की जो है ये खुजली पानी तो ठीक हो जाता है, उसकी नजर डैमेज हो जाती है, उसको सफेद या काला मोतिया या दोनों हो जाते हैं और नजर हमेशा के लिए उसकी खत्म हो जाती है, और हमारे देश में हर साल कई हजार बच्चे अंधे हो जाते हैं। और यह तकलीफ जो है अक्सर ये मार्च अप्रैल से शुरू होकर सितंबर अक्टूबर तक यह एलर्जी चलती रहती है, और जनरली 3-4 साल की उम्र से शुरू होती है और 18 साल की उम्र तक ये रहती है, उसके बाद ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। तो इस चीज का खास ध्यान रखें कि स्टीरॉयड का यूजेज डॉक्टर के सुपरविजन के बिना और रिपीटेड कंसल्टेशन के बिना रिपीटेड कंसल्टेशन में रिपीट करना चाहूंगा कि बार बार डॉक्टर को दिखाना जरूरी होता है अगर आपका स्टीरॉयड का यूज कर रहे हैं।
1: जैसे आपने कहा कि किसी डॉक्टर ने अगर एक हफ्ता लिखा है तो वो बोले कि ठीक नहीं हुआ है तो मैं और एक हफ्ता रिपीट कर लूं, तो वो
0: रिपीट ना करें जब तक आप डॉक्टर से दोबारा कंसल्ट ना करें।
1: जी जी। और कई बार ये भी होता है डॉक्टर साहब कि उसको कैसे बंद करना है उसमें भी वो धीरे धीरे करके उसको बंद किया जाता है, ऐसा भी होता है।

0: होता है।
1: अक्सर बहुत सारी ऐसी होती हैं तकलीफें, अगर इसको लंबे समय तक दिया जाए तो इसको धीरे धीरे बंद करना होता है, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म के लिए एक दो हफ्ते के लिए दिया गया तो फिर एकदम से बंद कर सकते हैं।
0: जी आपने आई ड्रॉप के बारे में भी डॉक्टर साहब बताया था, ड्राई आईज के लिए भी, और भी स्टेरॉइड्स अगर यूज होते हैं तो वो भी ड्रॉप्स के फॉर्म में ही होते हैं। तो हमारी ये श्रोता है, इन्होंने जानना चाहे कि आई ड्रॉप डालने के बाद कितनी देर बाद आंख खोलनी चाहिए।
1: एक मिनट तक बंद करना ठीक रहता है, काफी रहता है। बाकी आई थिंक ये काफी यंग पर्सन है तो इनको यूट्यूब वगैरह देखते होंगे, आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं हाउ टू अप्लाई आई ड्रॉप्स, उस पे आपके डजन्स आ जाएंगे, काफी दर्जनों आपकी वीडियो आ जाएगी, उनमें से एक हमारी बनाई हुई वीडियो भी है।
0: अच्छा।
1: राम मनोहर हॉस्पिटल से 2 मिनट की वीडियो है तो उसको जो है, जो लोग लंबे समय तक दवाई इस्तेमाल करते हैं जैसे ड्राई आईज के पेशेंट हैं या काले मोती के पेशेंट हैं, तो दवाइयां कैसे डाली जाए, उसका बेस्ट यूज कैसे किया जाए और उसके साइड इफेक्ट कम से कम कैसे किए जाए, वो सब चीजें उसके अंदर हमने दिखा रखी है।
0: जी ये प्रश्न किया था हमसे पुष्कर देवदिली जी ने, और उन्होंने अपना एज नहीं लिखी है, लेकिन आजकल तो सभी लोग फोन पे देख सकते हैं जाकर।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: तो जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, आप आरएमएल की जो ये यूट्यूब पे जाकर आप देख,
1: आरएमएल की यूट्यूब पे शायद नहीं होगा वो, या तो मेरे नाम से होगा।
0: अच्छा।
1: या फिर जो है आप हाउ टू अप्लाई आई ड्रॉप्स अगर लिखेंगे तो मिल जाएगा, या मेरा नाम लिखेंगे तो भी मेरे मिल जाएगा,
0: तो आप कोशिश कर सकते हैं। और काफी कुछ तो डॉक्टर साहब ने यहाँ भी बता दिया है। हमारे एक श्रोता फोन लाइन पर जुड़े हैं। हेलो।
2: हेलो
0: जी, आप सुन रहे हैं रेडियो डॉक्टर, नमस्कार, आपका स्वागत है। जी
2: थैंक यू।
0: प्रश्न करें, नाम पहले बता दें, कहाँ से बोल रही हैं, कौन बोल रहे हैं?
2: पीतमपुरा से अनीता वर्मा।
0: जी अनीता जी, बताएं अपने प्रश्न करें।
2: हाँ, एक प्रश्न है मेरा, क्या कोई भी आई ड्रॉप्स हो जैसे आप समर में आजकल फ्रिज में ही रखें या बाहर? और दूसरा सवाल है, जैसे ऑपरेशन होता है लोगों का, आई ऑपरेशन चेक टेक का, तो वो कहते हैं कि लोग कहते हैं कि 2 साल बाद दोबारा कराओ, रिपीट कराओ, क्या ये इसमें सत्य है कुछ? बस ये दो बताइए।
0: जी जी, डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि आई ड्रॉप को क्या हमेशा फ्रिज में रखना चाहिए गर्मियों में?
1: देखिए, फ्रिज में रखने से हमेशा अच्छा रहता है, एक तो ठंडक मिलती है जब आप आंख को डालेंगे तो वो सूदिंग होता है, दूसरा दवाई की लाइफ बढ़ जाती है। और जो दूसरी इन्होंने बात कही है कि कैटरेक्ट के ऑपरेशन के बाद दोबारा हो जाता है, कैटरेक्ट कभी भी दोबारा नहीं होता, लेकिन ये है कि जब हम कैटरेक्ट का ऑपरेशन करते हैं तो साथ में लेंस भी डालते हैं, लेंस को डालने के लिए हम जो कैटरेक्ट जो हम पूरा नहीं निकालते, उसकी एक झिल्ली होती है, झिल्ली को छोड़ दिया जाता है ऑपरेशन के टाइम पे, वो कुछ समय के बाद वो झिल्ली जो है पारदर्शिता उसकी खत्म हो जाती है, तो उसको एक माइनर सा प्रोसीजर होता है लेजर, जो कि ओपीडी में ही हो जाता है, उससे जो है वो झिल्ली को काट के उसको साफ कर दिया जाता है और नजर दोबारा साफ हो जाती है, और उसके बाद अगर वो एक बार पूरा हो जाए तो वो भी झिल्ली दोबारा कभी जिंदगी में नहीं आती है।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी प्रश्न करने के लिए, और एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेंगे और फिर लौटेंगे। प्रश्न हमारे पास बहुत सारे आ रहे हैं आंखों से संबंधित, पर हम चाहेंगे कि गर्मी में आंखों की सुरक्षा कैसे करें, अगर इस विषय पर आप और ज्यादा जानना चाहते हैं तो हमें जरूर लिखें। तो ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।

0: आप है कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में, मैं हूं शालिनी मित्तल और मेरे साथ आज के रेडियो डॉक्टर डॉक्टर मानवदीप सिंह। आप प्रोफेसर हैं, नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल नई दिल्ली में। और गर्मियों में आंखों की कैसे सुरक्षा की जा सकती है, खासतौर पर इस विषय पर हम बात कर रहे हैं। पर डॉक्टर साहब, बहुत सारे हमारे श्रोता हैं जिन्होंने आंखों की बहुत अन्य समस्याओं पर भी बात की है, हमें मैसेज लिखकर भेजा है। आपकी अगर आज्ञा हो तो मैं उनको भी शामिल कर लूं।
1: जरूर कीजिए
0: जी। शैली जी लिख रही हैं दिल्ली से कि आंखों में काजल लगाना सही है कि नहीं, बताएं।
1: देखिए, काजल डॉक्टर्स लोग हम लोग जनरली रिकमेंड नहीं करते हैं, लेकिन इस पे खास प्रिकॉशन एक ये है कि एक तो काजल अगर आप लगाना ही है तो बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। दूसरा जो है, अगर आप कुछ सुरमचू वगैरह या कोई और चीज लगाने के लिए यूज कर रहे हैं तो उसको एक से दूसरे के साथ ना लगाएं। तो यह है जो
0: मतलब
1: है,
0: अगर आपका है तो
1: पर्सनल है, पर्सनल होना चाहिए, दूसरे का नहीं होना चाहिए। और धोने के बाद साफ सुथरा उसको, मतलब वॉश करके साबुन से धोके उसके बाद ही उसको जो है टच करें। हाँ, संक्रमण का रिस्क इससे ज्यादा रहता है। और पहले जो है हमारे यहाँ जो कुकरे होते थे या जिसको हम लोग ट्रकोमा बोलते थे, बहुत ज्यादा था, वो बहुत कम हो गया इसी वजह से, क्योंकि इसके लिए कि कंपेयर हमने चलाई है कि काजल का इस्तेमाल कम से कम करें।
0: जी, हमारे एक श्रोता हैं जो फोन लाइन पर इंतजार कर रहे हैं डॉक्टर साहब। हेलो।
2: हेलो
0: जी। जी, आप बताएं अपना प्रश्न करें डॉक्टर साहब से।
2: डॉक्टर नमस्ते।
1: नमस्ते जी।
2: गजराज नाम है डॉक्टर मेरा।
0: जी जी, प्रश्न कर लें।
2: प्रश्न ये है, मेरी जो ना आंखों में सितंबर में जो ना लेफ्ट साइड में जो ना किसी ने घूसा मार दिया था।
1: हाँ जी।
2: तो मेरे को जो है ना दिखना बंद हो गया है। दिखता है, विजन तो मेरा ठीक आता है डॉक्टर, लेकिन जो दिमाग की दिक्कत बता रहे हैं डॉक्टर, जो मैंने चेक कराया ना तो दिमाग की, तो मेरी MRI हुई थी। MRI के अंदर जो ना वो डॉट्स बोलते हैं उनको, कीड़ा बोलते हैं।
1: हाँ जी, सिस्टिक सर्कोसिस।
2: नहीं, कीड़े थे वो।
1: हाँ, कीड़े सिस्टिक सर्कस ही होता है वो।
2: हाँ, वो कीड़ा का बताया था। तो मैं इंदुराव हॉस्पिटल गया था।
1: हाँ जी।
2: डॉक्टर साहब ने जो ना मेरे को एलपेंडा लिख दी थी।
1: हाँ जी, वो सिस्टिक सर्कोसिस के लिए लिखते हैं।
2: तो फिर वो जो ना दूसरी, जब मैंने दूसरी MRI कराई ना तो उसमें हट गए वो।
1: हाँ जी।
2: लेकिन मेरी रोशनी वापस नहीं आई है।
1: देखिए, ऐसा होता है कि जब ये आंख की जो आंख जो है वो, मैं आपको बताऊं कि देखने का काम नहीं करती। आंख केवल फोटो खींचती है, फोटो खींच के दिमाग को, मस्तिष्क को भेज देती है। तो यह जो आंख से मस्तिष्क तक जाने की जो चीज है, जो नस है, वो या जो दिमाग का हिस्सा है जो देखने का काम करता है, असल में अगर उसके अंदर कोई खराबी हो जाए तो आंखें अगर बिल्कुल ठीक भी हों तो भी आदमी देख नहीं पाएगा। क्योंकि आंख का काम सिर्फ फोटो खींचना है, देखने का नहीं है। देखने का काम मस्तिष्क का है और मस्तिष्क तक फोटो पहुंचनी भी बड़ी जरूरी है।
0: जी।
1: तो आपके मुझे जो लगता है न्यूरोसिस्टिक सर्कस की वजह से आपकी जो नस वो सूख गई है, तो इसका इस वक्त कोई इलाज संभव नहीं है। लेकिन मैं आपको इसके साथ एक और बात बताना चाहूंगा कि अगर किसी भी मरीज को अगर उसकी नस सूख गई हो, उसकी वजह से नजर खत्म हुई हो, तो वो अपने डेथ के बाद नेत्रदान कर सकता है और दूसरा आदमी उनके नेत्रों से देख सकता है। लेकिन वो खुद किसी और के नेत्र लेकर जो प्रत्यारोपण के बाद उसकी नजर नहीं आ सकती है।
0: और ये हमारे साथ एक और श्रोता जुड़े हैं जिन्होंने मैसेज किया है। अवधेश हैं औरंगाबाद बिहार से लिख रहे हैं। आई हेमरेज क्या होता है डॉक्टर साहब, ये जानना चाहते हैं।
1: देखिए, आई हेमरेज ना मेनली दो किस्म का मैं बताना चाहूंगा, या रादर तीन किस्म का होता है। जगह जगह की बात है कि कौन सी जगह पर होता है। एक तो बिल्कुल बाहर लगता है, जैसे किसी के बच्चे का नाखून लग गया, छोटी मोटी चीज है, वो बाहर लग गया, उसके लिए कोई इलाज नहीं करना होता, अपने आप वो लाली जैसी देखने में होती है और थोड़े समय बाद वो ठीक हो जाते हैं अपने आप, हफ्ते 10 दिन 15 दिन में। दूसरा होता है हेमरेज, जो आंख के पुतली के पीछे इमीडिएटली होता है, वो चोट वोट लगने से होता है अक्सर, और वो भी उसका इलाज थोड़ा करना पड़ता है। लेकिन जो तीसरा जो हेमरेज है, जो सबसे ज्यादा क्रूशियल है, वो होता है विट्रस हेमरेज, यानी कि पीछे के हिस्से का, लेंस के भी पीछे का हिस्सा, जो पर्दे से जो ब्लीडिंग होती है, यह ज्यादातर सबसे ज्यादा ये मधुमेह या डायबिटीज की वजह से होती है। और इसके अलावा और भी कई बीमारियां होती है, ईल्स डिजीज वगैरह होती है और कई किस्म की बीमारियां होती है जिससे यह हो सकता है। इसमें अगर यह अपने आप जो सिस्टम ईश्वर ने बनाया है उससे 10-15 दिन की अगर थोड़ी सी ब्लीडिंग हो, थोड़ा हेमरेज हो, तो 15-20 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन अक्सर इसका ऑपरेशन करके ब्लड को बाहर निकालना पड़ता है, उसके निकाले बिना आदमी को नजर नहीं आता। तो यह सीरियस बात होती है और इसके लिए स्पेशल डॉक्टर होते हैं। सभी नेत्र विशेषज्ञ भी इस काम को नहीं कर सकते।
0: जी, तो डॉक्टर साहब, अपने का ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ सकती है। तो कई बार लोगों से हमने सुना है कि गर्मियों में ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए, रिकवरी स्लो होती है, या क्या कारण होता है कि लोग ये सोचते हैं, और ये धारणा सही है कि नहीं?
1: देखिए गर्मी में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ इतना है वैसे आजकल लोगों के पास सबके पास रिसोर्सेज है, कूलर है, एसी है, बात यह है कि कुछ दिन तक क्योंकि आंख जो है आंखों को थोड़ा पानी नहीं आंख पे डालना होता ऑपरेशन के बाद, तो थोड़ा नहाने वगैरह सर धोने वगैरह में थोड़ी दिक्कत होती
0: अच्छा,
1: है
0: तो गर्मी
1: थोड़ी गर्मी महसूस होती है, गर्मी से आंख में पसीना आ जाता है, तो वो थोड़ा सा इनकन्वीनियंस होती है। लेकिन अगर आप टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, आप घर के अंदर रह सकते हैं, आपके पास टूल और एसी है, तो इसके लिए कोई ऐसी खास समस्या नहीं है।
0: जी जी, हमारे एक साथ श्रोता फोन लाइन पर है। हेलो,
3: नमस्कार जी।
0: जी नमस्कार जी,
3: मार्क भूषण बोल रहा हूँ जयपुर नगर से।
0: जी जी, आप अपना प्रश्न कर लें डॉक्टर साहब से।
3: डॉक्टर साहब, मैंने प्रश्न करवा कैटरेक्ट का।
1: हाँ जी,
3: तो इसने जो दवाई दे रखी है डॉक्टर साहब ने, तो ये थोड़ा जलन कर दी।
1: हाँ जी, एंटीबायोटिक और
3: स्टीरॉइड तो
1: नहीं, वो तो होगा ही होगा ऑपरेशन के बाद, कैटरेक्ट के ऑपरेशन के बाद एंटीबायोटिक और स्टीरॉइड तो एक महीने तक देते ही हैं, सभी देते हैं।
3: अच्छा,
1: तो नॉर्मल है, अगर आप उससे जलन वगैरह कुछ होती है तो उसको बर्दाश्त ही करना होगा बस। अच्छा, आप आंख की दवाई डाल के, एक तो आंख दवाई को फ्रिज में रखें, उससे जलन कम होगी, दूसरा आंख जब डालते हैं दवाई तो आप एक मिनट तक आंख को बंद रखेंगे तो उससे आपको थोड़ी सी तकलीफ कम रहेगी।
3: ठीक है सर,
0: तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने प्रश्न किया और उम्मीद है आपको जवाब भी सही मिल गया। और डॉक्टर साहब, विकास हैं, दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने लिखा है मेरी वाइफ की उम्र 24 वर्ष है, आंखों में बहुत पानी आता है, इसके लिए क्या करें, अभी कुछ टाइम से ऐसा आ रहा है। वैसे आपने बताया है, बहुत सारे प्रश्न है तो थोड़ा जल्दी जल्दी लेती हूं। कांता गुप्ता जी ने लिखा है उज्जैन से कि मोबाइल देर तक देखने पर आंखों का प्रेशर बढ़ता है क्या?
1: ऑपरेशन प्रेशर तो नहीं बढ़ता, लेकिन ज्यादा मोबाइल देखना अच्छा नहीं होता, कई और किस्म की प्रॉब्लम्स हो सकती है, स्पेशली जिसके अंदर आती है ड्राइज आई और चश्मे का माइनस नंबर का बढ़ना, तो इससे थोड़ा सा परहेज करें तो ज्यादा ठीक रहेगा
0: जी।
1: और अगर आपको करना ही है यूज, तो थोड़ा आंख से दूर करके रखें उसको, नजदीक बिल्कुल नजदीक न लाएं।
0: केएल कुमावत जी सीकर राजस्थान से पूछ रहे हैं कि क्या ज्यादा नींद आना भी आंख की बीमारी का संकेत
1: नहीं,
0: होता है?
1: नहीं, इसके साथ कोई संबंध नहीं है।
0: मेरे चश्मे का नंबर है 20, क्या उससे देखता हूँ लेकिन साफ नहीं दिखता, तो मैं क्या करूँ? ये अभिषेक गुप्ता है लेंसडाउन उत्तराखंड से।
1: देखिए, अगर इतना ज्यादा नंबर अगर होगा तो जो इमेज बनती है आंख के अंदर उसका साइज छोटा हो जाता है, तो इसके लिए इतने हाई पावर चश्मे से बहुत ही मुश्किलें होती हैं। इसके लिए एक तो स्पेशलाइज लेंसेज होते हैं जिनको हम बोलते हैं हाई इंडेक्स लेंसेज, थोड़े एक्सपेंसिव आते हैं लेकिन वो उनसे ये प्रॉब्लम थोड़ी कम हो जाती है। इसके अलावा कॉन्टेक्ट लेंसेज जो है वो यूज करना बेहतर होता है, उनसे क्वालिटी ऑफ विजन बहुत बेहतर मिलेगी चश्मे की बजाय। और अगर आप चाहें तो कुछ ऑपरेशन भी होते हैं चश्मे को कम करने के, लेकिन वो काफी रिस्की होते हैं इतने हाई पावर के लिए, तो वो आप डॉक्टर की सलाह से देख सकते हैं कि अगर आपकी आंख फिट है ऑपरेशन के लिए तो आप वो ऑपरेशन भी करवा सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब, कॉन्टेक्ट लेंस आपने बताया, तो अगर नंबर किसी का है तो वो कॉन्टेक्ट लेंस यूज कर सकता है?
1: इतने हाई नंबर के लिए तो कॉन्टेक्ट लेंस सबसे अच्छी चीज है।
0: अच्छा, और अगर किसी का नॉर्मल है, जैसे हम लोग रीडिंग के लिए चश्मा लगाते हैं, तो हम अगर रेगुलर यूज में चाहें तो कॉन्टेक्ट लेंस लगाएं, कोई नुकसान तो नहीं होगा?
1: रीडिंग के लिए जनरली कॉन्टेक्ट लेंस नहीं यूज करते, लेकिन जो डिस्टेंस का नंबर होता है उसके लिए कॉन्टेक्ट लेंस यूज करते हैं, सब दुनिया करते हैं, कोई खास बात नहीं है उसमें।
0: तो गर्मियों में कोई खास देखभाल करनी होती है कॉन्टेक्ट लेंस जो लगाते हैं?
1: आजकल जो कॉन्टेक्ट लेंस आते हैं वो पहले होते थे हार्ड कॉन्टेक्ट लेंसेज, तीन तीन चार चार साल लगते थे, उनको क्लीनिंग वगैरह की एक्सटेंसिव जरूरत होती थी। आजकल जो लेंसेज आते हैं इनके लिए कोई ऐसी खास केयर की जरूरत नहीं होती है। द ओनली थिंग इज कि आप ये देखें कि अगर आपको कॉन्टेक्ट लेंस लगा है तो आपको सोना नहीं है कॉन्टेक्ट लेंस लगा के, और अगर आपकी आंख में कुछ धूल मिट्टी चली गई है, आप आंधी वांधी आई है, तो उस एकदम से उसको निकाल के और कॉन्टेक्ट लेंस को भी साफ कर ले, आंख को धो ले, वो बहुत जरूरी है। आंख को उंगली से रगड़ना नहीं, अगर आपकी आंख के अंदर कॉन्टेक्ट लेंस है वो बिल्कुल भी नहीं करना, उससे आपकी आंख के अंदर जख्म होके हमेशा के लिए नजर के ऊपर असर हो सकता है।
0: जी, तो बहुत ध्यान रखना है और हाइजीन
1: को बिल्कुल मेंटेन करना है, और अगर आपको धूल मिट्टी गई है तो एकदम से आंख को साफ करना है, कॉन्टेक्ट लेंस को भी साफ करना है।
0: हमारे श्रोता हैं जो फोन लाइन पर कुछ सवाल पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब आपसे। हेलो
4: मैडम, नमस्कार
0: जी। नमस्कार
4: डॉक्टर साहब, नमस्कार।
1: नमस्कार जी
4: डॉक्टर साहब, मैं आरपी पेशेंट हूँ, दिल्ली से बात कर रहा हूँ, जाहिद नाम है मेरा।
1: किस चीज के पेशेंट है?
4: आरपी
1: के। अच्छा, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। हाँ जी
4: हाँ जी हाँ जी सर, तो कुछ हमारे लिए भी है कुछ डॉक्टर साहब इलाज है कुछ क्या?
1: देखिए, इसका इलाज तो अभी मैं कहूँगा नहीं है बेसिकली, इसके अंदर अभी कुछ ऑपरेशन चिप्स वगैरह कंप्यूटराइज शुरू हुए हैं, वो वेस्टर्न कंट्रीज में शुरू हो गए, लेकिन अभी उसके रिजल्ट अच्छे नहीं हैं और उसको बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत महंगे भी हैं। तो इसलिए अभी उनका अभी प्रैक्टिकल यूटिलिटी हमारे देश के लिए अभी नहीं है।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब कुणाल सिंह हमें लिख रहे हैं, मैसेज करके भेजा है उन्होंने कि मेरे दादा की उम्र 73 इयर्स है और मुझे पूछना है कि उनको 2020 में कॉर्निया ट्रांसप्लांट हुआ था लेकिन डॉक्टर ने बोला कि उनकी वेन्स वीक हैं जिसकी वजह से उनका विजन वापस नहीं आ पाया। अब 4 साल हो चुके हैं इस बात को और उनकी आंखों में पानी बहुत आता है और आई प्रेशर भी ज्यादा है, तो ये समस्या का वो निदान चाह रहे हैं।
1: देखिए अगर आपकी जैसे जो आप वेन्स जिसको कह रहे हैं, मुझे लगता नहीं वो वेन्स होगा, वो ऑप्टिक नर्व ही होगा यानी कि आंख की नस जो है, क्योंकि वो आंख के अंदर, ये एक खास बात नहीं है, बड़ी आम बात है कि जब कॉर्नियल ट्रांसप्लांट होता है तो प्रत्यारोपण के बाद आंख का प्रेशर बढ़ने लगता है, उससे नस सूख जाती है। अगर एक बार नस सूख जाए तो फिर दुनिया में किसी इलाज से नजर वापस नहीं आती, और अगर नस ही सूख चुकी है तो थोड़ा प्रेशर फिर ज्यादा रहता भी है तो उसको कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। दवाइयां जितनी कम से कम इस्तेमाल करेंगे उतना कम साइड इफेक्ट होंगे और कम जो है ना पानी आएगा। अगर नजर पूरी खत्म हो चुकी है तो दवाइयां इस्तेमाल ना करें, अगर नजर है थोड़ी बहुत फिर दवाइयां जरूर इस्तेमाल करें, उसमें बिल्कुल ही आपको गलती ना करें, क्योंकि अगर आपकी नजर है आपके दादाजी की और अगर वो प्रेशर जितना भी मेंटेन कर सके उसको जरूर करें, लेकिन अगर आपकी उनकी नजर बिल्कुल खत्म हो चुकी है तो फिर दवाइयां इस्तेमाल करके साइड इफेक्ट और पानी वगैरह के सिम्टम्स उनको मत दें।
0: तो अब एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक ले रहे हैं, छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्दी से वापस आएंगे, तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

आप सुन रहे कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर अपनी दोस्त शालिनी मित्तल के साथ और हमारे आज के एक्सपर्ट डॉक्टर मानवदीप सिंह हमारे साथ हैं। आप नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, प्रोफेसर हैं डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब, बहुत सारे मैसेज हैं, सबको लेना तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इनमें जनरल समर्स के बात नहीं है, बहुत सारी बीमारियां हैं, आंखों की तकलीफ है, तो मैं जल्दी जल्दी नाम लूंगी इन सबके क्योंकि ये शामिल हुए हमारे कार्यक्रम में, इनका धन्यवाद जरूर देना चाहूंगी। साथ ही साथ चलने से पहले, क्योंकि इन सब बीमारियों की जड़ होती है हमारा उचित खान पान ना हो या हम आंखों की एक्सरसाइज ना कर रहे हो, तो आप ये जरूर बताइएगा कि क्या खाएं जिससे कि आंख स्वस्थ रहे और कुछ एक्सरसाइजेस हो तो वो जल्दी जल्दी बता दें। मैं नाम लेती हूं, धर्मेंद्र कुमार सिंह जी ने अयोध्या उत्तर प्रदेश से हमें लिखा है, इसके अलावा हमें लिखा है मनदीप जी ने रोहतक से, राहुल ने न्यू दिल्ली से, सुशील ठाकुर जी का तो मैंने लिया था प्रश्न, उन्होंने दोबारा से किया है, ओम प्रकाश खंडेलवाल जी का भी लिया था प्रश्न, सीतामणि बिहार से प्रकाश कुमार जी ने लिखा है, इसके अलावा लिखा है हमें हरियाणा डिस्ट्रिक्ट करनाल से, वाल्मीकि मंदिर इन्होंने अपना एड्रेस

0: लिखा है, लिखने वाले का नाम मुझे जोगिंदर सिंह इन्होंने लिखा है, आलोका जी ने लिखा है हमें नोएडा से, और इसके अलावा हमें लिखा है किशन लाल जी ने, इन्होंने अपनी उम्र भी लिखी है 75 ईयर्स। इसके अलावा प्रेमपाल सिंह ने दिल्ली से हमें प्रश्न किया है, ये सारे ही प्रश्न हमें प्राप्त हुए हैं। सरिता जी ने मेरठ से, और इसके अलावा सिधौली सीतापुर से यासीन जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, इन्होंने भी प्रश्न किया है। सुरेश पाल जी ने हमें प्रश्न किया है दिल्ली सुल्तानपुरी से, इन्होंने बहुत सारे प्रश्न है। अभी समय हमारे पास नहीं बचा है सर, हम सिर्फ ये चाहेंगे कि आप हमें उचित देखभाल अपनी आंखों की और खान पान और एक्सरसाइज
1: बताएं। मैं सबसे पहले ये बता इसमें से ज्यादातर जो सवाल हैं जो मैं देख पा रहा हूँ वो पर्सनल है, इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल सवालों का जवाब देने का कोई हम दे नहीं पाते हैं कि उसके लिए, क्योंकि चेकअप की जरूरत होती है। तो आपसे सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी नेत्र विशेषज्ञ को जाके दिखाएं। और दूसरा एक सवाल मैं जरूर लेना चाहूंगा, वो किसी काले धब्बों के बारे में था, आंख के आगे काले धब्बे नजर आते हैं, तो वो जो है चीज 98-99% जो है वो उसका कोई मतलब नहीं होता, ये उम्र के साथ अपने आप होते हैं और अपने आप खत्म हो जाते हैं। लेकिन 1% जो केस होते हैं, 1 या 2% उसमें प्रॉब्लम जिसमें होती है वो बहुत सीरियस होती है। इसलिए ये सभी लोग जाके डॉक्टर को दिखाएं जरूर, और खास तौर पे अगर आंख के आगे किसी को फ्लैश भी नजर आती है कि लाइट नहीं है फिर भी लाइट नजर आती है तो उसको जरूर दिखाएं। बेशक 99% चांस ये है कि वो बिल्कुल ठीक रहे होंगे, कुछ भी नहीं होगा
0: जी।
1: और बाकी आप खान पान के बारे में बताया कि गर्मी में खास तौर पर हाइड्रेशन को ध्यान रखें, पानी पिए, शिकंजवी बना के पिए, नमक जो है आजकल फैशन बना हुआ है कि नमक कम लेना है, लेकिन गर्मी के अंदर नमक की बहुत अहमियत होती है। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह इसीलिए किया था क्योंकि हमारे जो गर्म देश होते हैं इनके अंदर नमक की हमें बहुत जरूरत रहती है। तो शिकंजवी बना के पिए, पानी पिए, ठंडा पानी पिए, और आंखों को धोएं, आंखों का बाहर जाएं तो आंख के साथ आंख को धोएं, ठंडा रखें, आंख को बर्फ लगाएं आंख के ऊपर, ये सब चीजें हैं, इनका ध्यान रखें। और खाने में जहां तक सवाल रहता है कि आजकल पीले फल हैं, आम वगैरह हैं, ये सर्दी में गाजर आएगी, तो ये जो चीजें हैं जिनके अंदर विटामिन ए की क्वांटिटी ज्यादा होती है, दूध और अंडा, ये सब चीजों के अंदर जो एसेंशियल विटामिन होते हैं आंख के लिए, आंख की सेहत के लिए, वो अच्छे होते हैं। बाकी आंख के लिए आपने एक्सरसाइज के लिए पूछा, जनरल एरोबिक एक्सरसाइजेस जो होती हैं वो आंख के लिए बिल्कुल अच्छी रहती हैं, उन्हीं से जो है आंख के अंदर प्रेशर भी कम रहता है और आंख की सेहत भी ठीक रहती है। लेकिन आंख के लिए कोई स्पेशल एक्सरसाइज जो है उसका कोई नहीं होती है, अनलेस की कोई खास किस्म की बीमारी होती है, जैसे स्क्विंट वगैरह में कुछ एक्सरसाइज करवाई जाती है, अदरवाइज आंख की कोई खास एक्सरसाइज स्पेशल एक्सरसाइज नहीं होती है।
0: जी जी डॉक्टर साहब, बहुत जल्दी जल्दी और बहुत सारे प्रश्नों के आपने जवाब दिए, समय कम पड़ गया हमें आज के प्रश्नों को शामिल करने के लिए, तो हम सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो फोन के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से हमारे साथ जुड़े, और खास धन्यवाद डॉक्टर मानवदीप सिंह जी का जो कि नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल नई दिल्ली में। आप यहां आए, समय निकालकर इतने प्रश्नों जवाब दिया, स्वीकार करें शालिनी मित्तल का नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब।
1: नमस्कार जी, शुक्रिया।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
4: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना

0: कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले में कहा कि देश ने अपने कर्मयोगियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हर भारतीय देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है। श्री मोदी ने कर्मचारियों को iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। 19वें रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से भी अधिक युवाओं को आज नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार के प्रयासों का मुख्य जोर भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए भर्ती हुए लोग वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में देश की यात्रा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। वहीं कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि रोजगार मेले के परिणाम स्वरूप पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से नियुक्तियों में वृद्धि हुई है। श्री सिंह ने कहा कि इस पहल ने समय सीमा का सख्ती से पालन किया है, जिससे युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है। संसदीय कार्य और सूचना तथा प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। चेन्नई स्थित ICF में आयोजित रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रोजगार के अवसरों और व्यापार सुगमता के क्षेत्र में तीव्रता से प्रगति कर रहा है। केरलम में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आज तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर वर्ष कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। बिहार सरकार ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के सभी विद्यार्थियों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी साझा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन और बढ़ाकर कल तक कर दी है। CBSE ने ये निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है, जिससे वेबसाइट बाधित हो रही थी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि भारत दुनिया की एकमात्र ऐसी बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसने होर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावट के शुरुआती 76 दिनों के दौरान खुदरा ईंधन कीमतों को लगभग अपरिवर्तित रखा है। सूत्रों के अनुसार रूस यूक्रेन युद्ध और होर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने के बीच भारत वैश्विक तेल संकट का असर स्वयं पर लेता रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। वे मंगलवार को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। और IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लम्हे प्रोग्राम विद मी योर आरजे चेतन। वर्कप्लेस के टॉक्सिक माहौल को ऐसे करें दूर, मेंटल हेल्थ रहेगी बेहतर। खराब माहौल से कर्मचारियों के काम पर भी बहुत असर पड़ता है। वर्कप्लेस में बढ़ते टॉक्सिक माहौल का मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। खराब माहौल से तनाव को दूर रखने के लिए ऑफिस में फन एक्टिविटीज में भाग ले। मन को शांत रखने के लिए ध्यान का सहारा भी ले सकते हैं। इस भागम भागी वाली जिंदगी में हर कोई कभी न कभी तनाव के दौर से जरूर गुजरता है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कॉम्पिटिटिव स्तर पर तनाव लेना अच्छा होता है, लेकिन यदि तनाव ज्यादा दिनों तक रहे तो यह आपके लाइफस्टाइल को बुरी तरह से प्रभावित करता है। बदलते दौर में कई बार ऑफिस के काम के चलते भी लोगों में तनाव आ जाता है और वर्कलोड का स्ट्रेस मेंटल हेल्थ पर असर डालने लगता है। अगर आप मानसिक तौर पर मजबूत नहीं रहते तो इससे आपके ऑफिस वर्क पर भी सीधा असर पड़ता है। पिछले कुछ समय में मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां तेजी से बढ़ी है। मेंटल हेल्थ एक ऐसा टॉपिक है जिस पर खुलकर बात करना जरूरी है। अगर वर्कप्लेस में मानसिक स्वास्थ्य की बात की जाए तब ये और भी अधिक जरूरी हो जाता है। सभी कार्यस्थल पर एक ऐसा माहौल बनाने की जरूरत है जो मानसिक तौर पर कर्मचारियों को रिलैक्स फील करे। अगर वर्कप्लेस का माहौल बेहतर है तो काम का प्रेशर भी आसानी से फेस किया जा सकता है। वर्कप्लेस का खराब माहौल मेंटल हेल्थ पर असर डालता है और इससे आप स्ट्रेस, एंग्जाइटी और चिंता का शिकार होने लगते हैं। हालांकि कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे वर्कप्लेस पर मेंटल हेल्थ का ध्यान रखा जा सकता है। हेल्थी बाउंड्रीज क्रिएट किए जा सकते हैं, जैसे आपको हर काम या फिर हर बात पर हाँ कहने की जरूरत नहीं है। आपको ये सीखना होगा कि आप कैसे शांत स्वभाव से दूसरों को कब और कैसे एक प्रोफेशनल की तरह न बोल सकते हैं। दैट मीन्स यू हैव टू लर्न टू से नो, न बोलना सीखे। ये एक बेहद जरूरी स्किल है। काम के बीच ब्रेक जरूर ले दोस्तों। कई लोग ऑफिस में काम के प्रेशर में लगातार घंटों बैठकर काम करते हैं। इसका मेंटल हेल्थ पर सीधा असर पड़ता है। इसीलिए जरूरी है कि काम के बीच में माइक्रो ब्रेक जरूर ले और इस दौरान कुछ शारीरिक गतिविधि करें। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ जिम्मेदारी मिलते ही लेकिन वह उस काम को ठीक से नहीं जानते हैं और इस वजह से वह इसे लेकर तनाव में रहते हैं। ऐसी स्थिति में आप किसी से मदद मांग सकते हैं। मदद मांगने से आप कमजोर साबित नहीं होंगे, हालांकि इससे आपके लोगों के बीच में मेलजोल जरूर बढ़ेगा जो आपको भविष्य में मदद करेगा। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। बीइंग कॉन्फिडेंट, सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भरता, ये बेहद जरूरी है कि इस भागम भागी और जिम्मेदारी भरी जिंदगी में अपने लिए समय जरूर निकालें। कई लोग काम में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि अपने बारे में सोचना ही बंद कर देते हैं। हर दिन कुछ घंटे खुद के लिए निकालें। फन एक्टिविटीज में भाग ले, पार्टिसिपेट इन सम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज अपार्ट फ्रॉम योर प्रोफेशनल वर्क। कई लोग वर्कप्लेस में काफी रिजर्व होते हैं। ऐसी आदत कई बार कर्मचारियों को अकेला बना देता है। तनाव को दूर रखने के लिए ऑफिस में फन एक्टिविटीज में हिस्सा ले। अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दे। मानसिक तौर पर मजबूत रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहे। आप खुद में ऐसी आदतों को डालें जो आपको आत्मनिर्भर बनाए। अच्छी फिटनेस के लिए जरूरी है कि हर दिन एक्सरसाइज या फिर योगा, मेडिटेशन, ये सब कर सकते हैं। एरोबिक एक्टिविटीज है, स्विमिंग है, डांस है, म्यूजिक थेरेपी है, ये सब आप अपनाएं। मन को शांत रखने के लिए ध्यान का सहारा भी ले सकते हैं। मेंटल हेल्थ को लेकर इन दिनों लोग जागरूक होने लगे हैं। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी बेहद जरूरी है। अच्छी सेहत के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, खान पान में परहेज से लेकर जिम में घंटे एक्सरसाइज करने तक आप सब कुछ करते हैं। आप अपने शरीर पर कितना भी मेहनत कर ले, अगर आप मेंटल हेल्थ पर ध्यान नहीं देते तो आप सेहतमंद नहीं हो सकते।
मेंटल हेल्थ से अक्सर लोगों को दिमाग के डिप्रेशन जैसी चीजें सामने आती है। रोजमर्रा के छोटे छोटे तनाव के बारे में हम सोचते ही नहीं है। आपको बता दे कि ऑफिस में होने वाले रोज के टेंशन भी आपके सेहत के लिए बुरी साबित हो सकती है। ऑफिस के तनाव का आपके काम पर तो असर पड़ता ही है, आपकी सेहत पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। आपको कोशिश करना चाहिए कि ऑफिस में मिलने वाले प्रेशर का आप पर ज्यादा असर न पड़े और आपके आसपास का माहौल खुशनुमा रहे। आइए आज के लम्हे प्रोग्राम में आरजे चेतन आपको बताते हैं कि कैसे आप ऑफिस में भी अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com।

ऑफिस में अगर योगा, मेडिटेशन, डांस या कोई फन एक्टिविटी हो रही है तो समय बचाने के चक्कर में न पड़े और बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा ले। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें पूरे ऑफिस को बुलाया गया हो उसमें जरूर शामिल हो। अगर आपको कोई भी बात मानसिक रूप से परेशान कर रही है तो इस बारे में अपने सीनियर से बात करें। आपके बॉस को पता होना चाहिए कि आपके साथ क्या दिक्कत है। बॉस के जवाब से आप भी समझ जाएंगे कि आगे आपको क्या कदम उठाने।

वर्क लाइफ बैलेंस ये बेहद जरूरी है। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाए बिना आपके दोनों ही गाड़ियां पटरी से उतर सकती है। ध्यान रहे कि घर में तनाव का असर आपके काम पर न पड़े। इसी तरह ऑफिस की टेंशन ऑफिस के एग्जिट तक ही आपके साथ रहनी चाहिए। इसके बाहर की दुनिया आपकी अपनी है। वर्क स्टेशन की सजावट, हाउ यू डेकोरेट योर वर्क प्लेस, ये छोटा सा लेकिन बेहद कारगर तरीका है। अपने वर्क स्टेशन पर अपने पसंदी के चीज सजाएं, अपने परिवार वालों के तस्वीर सजा सकते हैं और कोई मोटिवेशनल कोट सामने लगा सकते हैं या आपको चीयर करने में मदद करेंगे। सो ऑल चीयर्स टू लाइफ। विद दिस वी कंक्लूड टुडेस प्रोग्राम। आई विल गेट बैक टू यू इन आवर नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ लम्हे। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम माय डियर फ्रेंड्स, बाय। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.

विवेक और ईशा पिचराई से इस गाने के म्यूजिक की बात करें तो ए आर रहमान साहब और इस्माइल दरबार ने मिलकर एक साउंडस्केप क्रिएट किया है जो क्लासिकल भी है, सिनेमैटिक भी है और स्पिरिचुअल भी है। नमस्ते इंडिया, स्क्रॉल स्वाइप क्लिक, अल्फा जनरेशन, टेक्सीवी डायनेमिक और आज की दुनिया के यंगेस्ट कंज्यूमर्स, उनकी जिंदगी कहीं ना कहीं इन तीन वर्ड्स स्क्रॉल स्वाइप क्लिक के आसपास ही घूमती नजर आती है। इन्फॉर्मेशन उनके फिंगर टिप्स पर है, दुनिया उनके स्क्रीन पर है, लेकिन इस डिजिटल स्पीड के बीच कभी कभी जरूरत पड़ती है एक छोटे से पॉज की, एक डिटॉक्स की। आकाशवाणी रेनबो पर प्रोग्राम अल्फा जन के आज के एडिशन लेट्स डिटॉक्स में हम बात करेंगे कंपैरिजन डिटॉक्स के बारे में, जहां आज मैं हूं प्रियंका वर्मा आपके साथ। गुड इवनिंग।

पाठक की आवाज में ये ट्रैक फ्रीडम एडवेंचर और सेल्फ डिस्कवरी की फीलिंग को ब्यूटीफुली कैप्चर करता है और इस ट्रैक्स में जो यूथफुल एनर्जी है ना वो इंस्टेंटली अपलिफ्ट करती है। आकाशवाणी रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है लेट्स डिटॉक्स। ऐ चाहते हुए लम्हों जरा ठहरो जरा ठहरो, मुझे खुद से मिलना है, इस भागती हुई जिंदगी में अपनी धड़कनों को भी सुनना है, बस कुछ लम्हे चुरा कर वक्त से खुद के नाम करना है। तो आइए दोस्तों आज कुछ देर के लिए फास्ट पेस दुनिया से एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, थोड़ी देर ठहर कर खुद से मिलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कभी कभी खुद के साथ बैठना ही सबसे बड़ी इमोशनल हीलिंग होती है। लेट्स डिटॉक्स के आज के एडिशन में हम बात करेंगे कंपैरिजन डिटॉक्स की। जब सोशल मीडिया की परफेक्ट पिक्चर, सक्सेस अपडेट्स और फिल्टर्ड स्माइल्स धीरे धीरे हमारी इनर पीस को अफेक्ट करने लगती हैं, हमारे दिल में अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट करने लगती हैं, जब दूसरों की लाइफ देखते देखते अपनी रियलिटी अधूरी सी लगने लगती है और जब लोग क्या सोचेंगे से क्या मैं इनफ हूँ जैसे थॉट्स अंदर ही अंदर कॉन्फिडेंस को एग्जॉस्ट करने लगते हैं, ड्रेन करने लगते हैं, जी हाँ, तो क्या होता है, चलिए इसी पे बात करेंगे। आज मैं और मेरा डेली रूटीन एक छोटा सा इमोशनल चेक इन करेंगे। आज हम आपसे पूछेंगे कि क्या मैं अपनी लाइफ को ट्रूली फील कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, या हर वक्त किसी और की लाइफ को खुद से कंपेयर कर रही हूँ या कर रहा हूँ, क्या अपनी ग्रोथ को अप्रिशिएट करती हूँ या करता हूँ, या सिर्फ दूसरों के अचीवमेंट्स को देखकर खुद को जज करती हूँ या करता हूँ, क्या मेरी डेली स्क्रोलिंग मुझे इंस्पायर कर रही है या धीरे धीरे मेरे इनर पीस को ड्रेन कर रही है, और सबसे जरूरी, क्या मैं वैलिडेशन के शोर में खुद को खो रहा हूँ या खो रही हूँ, या मैं अपनी इंडिविजुअलिटी को जेन्युइनली समझ रहा हूँ या समझ रही हूँ। तो आइए थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, कंपैरिजन की नॉइज को हल्का करते हैं, खुद की जर्नी को फिर से फील करते हैं और अपनी फ्रिक्वेंसी को ग्रैटिट्यूड और सेल्फ ग्रोथ के साथ रिकनेक्ट करते हैं, क्योंकि जब हम वैलिडेशन के प्रेशर से बाहर निकलना सीख लेते हैं तभी जिंदगी की असली रिदम वापस महसूस होने लगती है और कंपैरिजन से लिब्रेशन तक का सफर शुरू होता है। चलिए फिलहाल ये गाना भी हम प्ले करते हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

इंस्पायरिंग पेट्रियोटिक ट्रैक को आपने सुना, जो देशभक्ति के जज्बे को दिल से महसूस कराता है, एक सेंस ऑफ प्राइड और रिस्पॉन्सिबिलिटी को जगाता है। नेशन कम्स फर्स्ट का सेंस पूरे गाने में रिफ्लेक्ट होता है। आकाशवाणी रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है अल्फा जेन, जहां आज लेट्स डिटॉक्स के एडिशन में हम बात कर रहे हैं कंपेरिजन डिटॉक्स की। रील्स अपडेट स्टोरी सब दिल को भटकाते हैं, जरा गौर फरमाइएगा। रील्स अपडेट स्टोरी सब दिल को भटकाते हैं, रियल लाइफ और रील लाइफ में कश्मकश बढ़ाते हैं। क्यों ना अपनी जिंदगी के रिदम को फिर से महसूस किया जाए, कंपैरिजन से दूर रहकर खुद में सुकून पाया जाए। आज के डिजिटल जमाने में दोस्तों, सोशल मीडिया हमारी डेली लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है। ये हमारे ब्रेन और इमोशंस दोनों को डीपली इन्फ्लुएंस करता है, और हमें हम सुबह उठते ही नोटिफिकेशन चेक करते हैं ना, और रात को सोने से पहले भी स्क्रॉलिंग करते हैं। अब झूठ मत बोलेगा, करते हैं। रील्स अपडेट स्टोरीज या वायरल लाइफस्टाइल कंटेंट देखते हमारा माइंड अनोइंगली कंपैरिजन मोड में चला जाता है। किसी की लग्जूरियस लाइफस्टाइल, परफेक्ट सेल्फीज, हैप्पी रिलेशनशिप्स या करियर सक्सेस देखकर हम अक्सर अपनी लाइफ को उनके स्टैंडर्ड से कंपेयर करने लगते हैं। वहीं से शुरू होता है इमोशनल प्रेशर। सबकी लाइफ इतनी सॉर्टेड लगती है, सिर्फ मैं ही स्ट्रगल क्यों कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मैं इतना अनहैप्पी क्यों हूँ, मेरी लाइफ इतनी परफेक्ट क्यों नहीं है बॉस, सब आगे बढ़ रहे हैं, मैं क्यों पीछे रह गई हूँ या रह गया हूँ। इसमें कंपैरिजन में सबसे ज्यादा जो थकावट ना फिजिकल नहीं होती, इमोशनल कंपैरिजन की होती है। वो कंपैरिजन जो साइलेंटली सेल्फ वर्थ को कम कर देता है, जो इंसान को ये महसूस कराता है कि शायद वो इनफ नहीं है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर जो दिखता है वो अक्सर सिर्फ एक सिलेक्टेड मोमेंट होता है, पूरी कहानी नहीं। हर मुस्कुराहट के पीछे स्ट्रगल्स होते हैं जनाब, हर सक्सेस के पीछे एंग्जाइटी, और हर परफेक्ट लाइफ के पीछे अनस्पोकन लोनलीनेस भी हो सकती है। लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ फिल्टर्ड हैप्पीनेस नजर आती है, और हम उस फिल्टर्ड दुनिया को अपने रियल इमोशन से कंपेयर करने लगते हैं। इस बात को अच्छी तरह समझ लेते हैं कि ऑनलाइन दुनिया में लोग अपनी लाइफ के मोस्टली बेस्ट मोमेंट्स ही शेयर करते हैं। फेलियर, लोनलीनेस, स्ट्रेस, इनसिक्योरिटीज और इमोशनल ब्रेकडाउन्स यूजली कैमरे के पीछे रह जाते हैं। इसलिए सोशल मीडिया की हाईलाइट एक हाईलाइट रील क्रिएट करता है, जबकि रियल लाइफ इमोशंस काफी लेयर्ड और इम्परफेक्ट होते हैं, जो बर्डन महसूस कराते हैं। कंपैरिजन डिटॉक्स इसी इमोशनल बर्डन से बाहर निकलने का नाम है बंधु। दोस्तों, जब हम किसी की एडिटेड हाइलाइट्स को अपनी रियल लाइफ स्ट्रगल से कंपेयर करने लगते हैं, इससे स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल इंक्रीज हो सकता है और सेल्फ एस्टीम ग्रेजुअली लो होने लगता है। कंपैरिजन डिटॉक्स का मतलब सोशल मीडिया को कम्प्लीटली क्विट करना नहीं है, बल्कि उसके साथ हेल्दी रिलेशनशिप बनाना है। हर चीज को रियलिटी मान लेना जरूरी नहीं होता। कभी कभी फोन साइड पर रखकर अपने रियल लाइफ कनेक्शंस, हॉबीज और इनर पीस पर फोकस करना भी इक्वली इम्पोर्टेंट होता है। जब अटेंशन कंपैरिजन से हटकर ग्रैटिट्यूड पर शिफ्ट होती है ना, जी हाँ बंधु, यानी जब हम फोकस इस बात पर शिफ्ट करते हैं कि मेरे पास क्या नहीं है से मेरे पास क्या है, द माइंड ग्रेजुअली पीसफुल फील करने लगता है। इनफैक्ट बहुत ज्यादा काम और इमोशनली फील बैलेंस करता है। रिसर्च भी यही सजेस्ट करते हैं कि ग्रैटिट्यूड और सेल्फ एक्सेप्टेंस ब्रेन में डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे फील गुड केमिकल्स को सपोर्ट करते हैं। इसलिए जब हम अपनी लाइफ के स्मॉल अचीवमेंट्स को अप्रिशिएट करना शुरू करते हैं, तो कंपैरिजन का प्रेशर धीरे धीरे कम होने लगता है। जिंदगी किसी रेस का स्कोरबोर्ड नहीं है मेरे बंधु। हर इंसान की स्टोरी, टाइमिंग और स्ट्रगल्स और ग्रोथ पैटर्न अलग होते हैं। सोशल मीडिया की फिल्टर्ड दुनिया से थोड़ा डिटॉक्स लेकर जब हम अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं, तभी असली सुकून और इमोशनल फ्रीडम महसूस होती है। इसलिए करके देखिए मेरे बंधु, फिलहाल ही गाना सुनकर देखिए। मैं हूँ प्रियंका वर्मा आपके साथ प्रोग्राम लेट्स डिटॉक्स में।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आकाशवाणी रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है लेट्स टॉक्स। आज के एडिशन में हम बात कर रहे हैं कंपैरिजन डिटॉक्स की और आज मैं हूं प्रियंका वर्मा आपके साथ।

एक पावरफुल इंटेंस और डीपली मोटिवेशनल ट्रैक है गाइस, जो करेज और सेल्फ बिलीव की स्पिरिट को ब्यूटीफुली कैप्चर करता है। ओरिजिनली रविंद्रनाथ टैगोर जी की टाइमलेस कॉम्पोजिशन को फिल्म कहानी में मॉडर्न येट सोलफुल टच के साथ प्रेजेंट किया गया। आकाशवाणी रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है, यस लेट्स इट टॉक्स। और आज हम बात कर रहे हैं कंपैरिजन डिटॉक्स की। कंपैरिजन की भीड़ में खुद को खोना जरूरी तो नहीं, कंपैरिजन की भीड़ में खुद को खोना जरूरी तो नहीं। हर चमकती तस्वीर के पीछे सुकून हो ये भी जरूरी नहीं। जब ग्रैटिट्यूड और सेल्फ ग्रोथ की दिल की फ्रिक्वेंसी बन जाए, जब ग्रैटिट्यूड और सेल्फ ग्रोथ दिल की फ्रिक्वेंसी बन जाए, तब जिंदगी रेस और कंपैरिजन नहीं एक खूबसूरत सफर बन जाए। आज के डिजिटल एरा में कंपैरिजन एक साइलेंट हैबिट बन चुकी है। किसी की सक्सेस स्टोरी, किसी की लग्जरी लाइफस्टाइल, किसी की परफेक्ट लाइफ देखते देखते हम खुद अपनी जर्नी को इग्नोर कर देते हैं और पता ही नहीं चलता कि हमने ये सब कब कर दिया। दिल बस ये सब देखकर चुपचाप अपनी कमियां गिनने लगता है। मेरे में ये कमी है, मेरे में वो कमी नहीं है, बाप रे। सोशल मीडिया का कांस्टेंट एक्सपोजर हमारे ब्रेन को बार बार ये सिग्नल देता है कि शायद हम इनफ नहीं है। दिल के अंदर एक साइलेंट क्वेश्चन उठता है, क्या मैं पीछे रह गया हूँ या रह गई हूँ? और इसी जगह से शुरू होता है इमोशनल एग्जॉशन, सेल्फ डाउट और इनर डिससैटिस्फेक्शन का साइकिल। साइकिल को तोड़ने का नाम है कंपैरिजन डिटॉक्स, और इसी इमोशनल क्लटर को क्लीन करने का नाम है यस कंपैरिजन डिटॉक्स। और इस डिटॉक्स का सबसे पावरफुल कॉम्बिनेशन है ग्रैटिट्यूड और सेल्फ ग्रोथ की फ्रीक्वेंसी। कंपैरिजन डिटॉक्स का मतलब दुनिया से डिसकनेक्ट होना नहीं है, बल्कि खुद से रिकनेक्ट होना है। ग्रैटिट्यूड यानी शुक्र और एप्रिसिएशन की फीलिंग ब्रेन के इमोशनल सर्किट्स को काम करती है। जब हम कॉन्शियसली उन चीजों पर फोकस करते हैं जो ऑलरेडी हमारे पास है, हेल्दी रिलेशनशिप, स्मॉल अचीवमेंट्स, इनर पीस, डेली कंफर्ट्स, ए केयरिंग फैमिली, अपनी हेल्थ, अपनी मेहनत, तो ब्रेन डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे फील गुड केमिकल्स रिलीज करता है। ये केमिकल्स इमोशनल स्टेबिलिटी और पॉजिटिविटी को नेचुरली इंक्रीज करते हैं। इसलिए ग्रैटिट्यूड सिर्फ एक इमोशन नहीं है, एक हीलिंग फ्रिक्वेंसी है। जब इंसान ग्रैटिट्यूड फील करता है ना दोस्तों, तब उसका फोकस लैक से वैल्यू की तरफ शिफ्ट होने लगता है। धीरे धीरे दिल में कंप्लेंट कम और कंटेंटमेंट ज्यादा लगती है, और वही कंटेंटमेंट कंपैरिजन के नॉइज को कम करता है। लेकिन हाँ, सिर्फ ग्रैटिट्यूड ही इनफ नहीं होता, उसके साथ जरूरी होती है सेल्फ ग्रोथ की फ्रिक्वेंसी। सेल्फ ग्रोथ का मतलब परफेक्ट बनना बिल्कुल नहीं होता है, इसका मतलब होता है हर दिन थोड़ा बेटर बनना बस। कभी अपनी आदतों को इम्प्रूव करना, कभी इमोशनल हीलिंग पर काम करना, कभी अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना, कभी सिर्फ इतना समझना कि हर इंसान की जर्नी अलग होती है। जब हम दूसरों की स्पीच से अपनी वर्ड डिसाइड करना छोड़ देते हैं, तब ग्रोथ नेचुरली बिगिन होती है। फिर इंसान रेस में नहीं भागता दोस्त, बैलेंस सीखता है। मीनिंगफुल सेल्फ ग्रोथ हमेशा अंदर से शुरू होता है, वो लाउड नहीं होता, लेकिन लाइफ को डीपली ट्रांसफॉर्म करता है। कंपैरिजन हमें टेम्परेली इनसिक्योर बना सकता है, लेकिन ग्रैटिट्यूड और सेल्फ ग्रोथ हमें इमोशनली ग्राउंडेड बना देते हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है बंधु, बिल्कुल। ये दोनों मिलकर कैसी इनर फ्रिक्वेंसी क्रिएट करता है, जहां इंसान वैलिडेशन से ज्यादा इनर पीस को इम्पोर्टेंस देने लगता है। तब लाइफ कॉम्पिटिशन नहीं लगती, एक पर्सनल जर्नी लगती है। कंपैरिजन डिटॉक्स का असली सेंस शायद यही है, दूसरों की कहानी देखकर खुद को कम समझना बंद कर देना और अपनी कहानी को प्यार और पेशेंस के साथ जीना शुरू कर देना, है ना? मुझे भी यही लगता है। चलिए फिलहाल अभी तो हमें एक गाना प्ले करना है।

स्पेशली ट्रैक कितना वायरल हुआ है ना, सीरियसली. इस ट्रैक में प्यार की सॉफ्टनेस और लॉन्गिंग दोनों ब्यूटीफुली ब्लेंड होते हैं. और इस ट्रैक का जो रियल मैजिक है वो है इसके वोकल्स. जैस्मिन और सतेंद्र की अपनी अलग अलग टेक्सचर्स के साथ एक खूबसूरत इमोशनल कैनवास ही दोनों क्रिएट करते हैं. उन दोनों के वोकल ट्रांजिशन मैजिकल भी हैं, जहाँ गाना एक एहसास से

उस एहसास में स्मूथली क्लाइंट करता है। आकाशवाणी रेनबो पर मैं हूँ प्रियंका वर्मा आपके साथ। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। वैलिडेशन के शोर में खुद को यूं खो देना, वैलिडेशन के शोर में खुद को यूं खो देना, हर अप्रूवल के साथ खुद को यूं कंपेयर करना, क्यों ना अपने जिंदगी के रिदम को फिर से महसूस किया जाए और कंपेरिजन से लिब्रेशन तक के सफर में खुद को वापस पा लिया जाए। आज के वक्त में बहुत से लोग अननोनली वैलिडेशन की रेस में जी रहे हैं दोस्तों। किसी को अपनी अचीवमेंट्स दिखानी है, किसी को परफेक्ट इमेज मेंटेन करनी है, किसी को सिर्फ ये फील करना है कि लोग उन्हें अप्रिशिएट करें। धीरे धीरे इंसान अपनी हैप्पीनेस को दूसरे के रिएक्शन से कनेक्ट कर लेता है। एक कॉम्प्लीमेंट मिल जाए तो कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है, और इग्नोर हो जाए तो दिल चुपचाप खुद पर सवाल करने लगता है। और यही वैलिडेशन का इमोशनल ट्रैप है बंधु। सोशल मीडिया ने इस फीलिंग को और इंटेंस बना दिया है। लाइक्स, कमेंट्स, व्यूज और एप्रिसिएशन के नंबर्स धीरे धीरे सेल्फ वर्थ के मेजर बनने लगते हैं। इंसान अपनी रियलिटी से ज्यादा दूसरों के अप्रूवल को इम्पोर्टेंस देने लगता है और फिर कंपेरिजन साइलेंटली लाइफ का पार्ट बन जाता है। अरे हाँ दोस्तों, एक बात और, ये मत सोचना कि ये सब आपके साथ होता है। ना ना, हम भी उसमें शामिल है, हम भी अपने आप को धीरे धीरे हील करते रहते हैं दोस्तों। दिल के अंदर बार बार थॉट आते हैं, क्या मैं हूँ, लोग क्या सोचेंगे, लोगों को पसंद आएगा या नहीं आएगा, मैं इनफ लग रहा हूँ या लग रही हूँ, और इसी जगह कंपैरिजन साइलेंटली लाइफ में एंटर कर जाता है। इसी इमोशनल प्रेशर को समझना, उससे बाहर निकलना ही कंपैरिजन डिटॉक्स का इम्पोर्टेंट पार्ट है। आज के डिजिटल एरा में दोस्तों वैलिडेशन की क्रेविंग और भी ज्यादा बढ़ गई है। सोशल मीडिया पर लाइक्स, कमेंट्स और रिएक्शन सिर्फ नंबर्स नहीं रहे, वो इमोशनल रीअश्योरेंस बन गए हैं। जब एप्रिसिएशन मिलता है तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, और जब रिस्पांस कम मिलता है तो इंसान अननोइंगली खुद पर डाउट करने लगता है। लेकिन सच यह है कि एक्सटर्नल वैलिडेशन कभी परमानेंट सुकून नहीं दे सकता, वो सिर्फ टेम्परेरी सेटिस्फेक्शन देता है, क्योंकि दूसरों के ओपिनियंस हर वक्त चेंज होते रहते हैं। अगर हम अपनी पीस को उनके रिएक्शन पे बांध देंगे ना, तो हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी भी उनके अकॉर्डिंग ही अप डाउन होती रहेगी। इसी इमोशनल डिपेंडेंसी को समझना और धीरे धीरे उससे फ्री होना ही कंपैरिजन डिटॉक्स का इम्पोर्टेंट एसेंस है। वैलिडेशन से लिब्रेशन तक का सफर एक्चुअली सेल्फ वर्थ को डिस्कवर करना ही होता है। लिब्रेशन यानी इमोशनल फ्रीडम तब बिगिन होती है जब इंसान ये समझने लगता है कि बार बार सबको इम्प्रेस करना जरूरी नहीं होता, हर इंसान की एक्सप्रेशन अलग होती है और सबको अप्रूवल कभी एक साथ मिल ही नहीं सकता। जी वो तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हर इंसान की चॉइस, पर्सनालिटी और जर्नी अलग होती है। सबको खुश रखना पॉसिबल ही नहीं है, हम कोई राजमा चावल थोड़ी है कहते हैं ना। और जब हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि तब अंदर का एक्सचेंज से सुकून हमें आता है, और शायद यही कभी कभी सबसे बड़ा हीलिंग मोमेंट होता है, जब इंसान खुद को ये कह पाता है कि मुझे हर बार प्रूव करने की जरूरत नहीं है। उस मोमेंट में एक अजीब सा इमोशनल सुकून होता है। फिर इंसान लाइक्स और अप्लॉज के पीछे भागना कम कर देता है और अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करना सीखता है। अपने इम्परफेक्शंस के साथ भी खुद को प्यार करना सीखता है। लिब्रेशन का मतलब परफेक्ट बनना नहीं होता, बल्कि अपने फ्लॉज के साथ खुद को इनफ फील करना होता है। इसका मतलब केयरलेस और इमोशनल लेस बनना बिल्कुल भी नहीं होता मेरे बंधु। अपनी वर्थ को समझना होता है, इसका मतलब खुद को कॉन्स्टेंटली प्रूव करना बंद करना, अपनी इंडिविजुअलिटी को एक्सेप्ट करना और अप्रूवल के बिना खुद को इनर फील करना। ये सब फॉलो करके धीरे धीरे कंपैरिजन का नॉइस कम होने लगता है और इनर पीस की वॉइस क्लियर होने लगती है। ये प्रोसेस ईजी नहीं होता, क्योंकि वैलिडेशन की आदत धीरे धीरे इमोशनल डिपेंडेंसी बन जाती है। लेकिन जब इंसान कॉन्शियसली सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ एक्सेप्टेंस पर काम करता है, तो कंपैरिजन का प्रेशर कम होने लगता है, और फिर यानी धीरे धीरे कंपैरिजन का नॉइज कम होने लगता है। पर इंसान दुनिया को इम्प्रेस करने के लिए नहीं है, खुद के इनर पीस के लिए जीना शुरू करना है। वैलिडेशन सेलिब्रेशन तक का सफर बहुत इमोशनल होता है दोस्तों। प्लीज, बेसिकली ये सफर अपनी थिंकिंग को हील करने का सफर होता है, क्योंकि इस सफर में इंसान दुनिया की नजरों से निकल कर अपनी खुद की नजरों में जीना सीखता है। शायद कंपैरिजन डिटॉक्स का ब्यूटीफुल लेसन भी यही होता है। और इसी लेसन के साथ टेक केयर गाइस, स्टे म्यूजिकल एंड स्टे ब्लेस्ड। प्रियंका कहती है आपसे टाटा, बाय बाय। प्लीज अपना ध्यान रखिए और अपने देश का मान बढ़ाते रहिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमरीका वैश्विक भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित थे। श्री मार्को रूबियो 26 मई को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। वे आज अमेरिका से कोलकाता पहुंचे, जहां उन्होंने मशीनरीज ऑफ चैरिटी का दौरा किया और मदर टेरेसा की विरासत को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले में कहा कि देश ने अपने कर्मयोगियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे और मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतीय देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है। श्री मोदी ने कर्मचारियों को आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। 19वें रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में नव नियुक्त 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को आज नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार का अथक प्रयास भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए भर्ती हुए लोग 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। वहीं कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि रोजगार मेले के परिणाम स्वरूप पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से नियुक्तियों में वृद्धि हुई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ी कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। उन्होंने कहा कि सरकार भव्य योजना के

0: माध्यम से कारोबारी सुगमता के लिए देश भर में 100 औद्योगिक पार्क स्थापित करेगी। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था अगले महीने की 21 तारीख तक इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। हालांकि भारत दुनिया की एकमात्र ऐसी बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावट के शुरुआती 76 दिनों के दौरान खुदरा ईंधन की कीमतों को लगभग अपरिवर्तित रखा है। सूत्रों के अनुसार रूस यूक्रेन युद्ध और हॉर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने के बीच भारत वैश्विक तेल संकट का असर स्वयं पर लेता रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन और बढ़ाकर कल तक कर दी है। CBSE ने यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है। लखनऊ में IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi and US Secretary of State Marco Rubio today discussed sustained progress in the India-US Comprehensive Global Strategic Partnership and issues related to regional and global peace and security. Secretary Rubio called on Prime Minister Modi at Seva Teerth in New Delhi this afternoon. Prime Minister Modi said in a social media post that India and the US will continue to work closely for the global good. External Affairs Minister Dr. Jaishankar and NSA Ajit Doval were also present during the meeting. The Prime Minister's office said in a statement that Secretary Rubio briefed Prime Minister Modi on the sustained progress in bilateral cooperation across a wide range of sectors, including defence, strategic technologies, trade and investment, energy security, connectivity, education and people-to-people ties. Secretary Rubio shared the US perspective on various regional and global issues, including the situation in West Asia. Mr. Modi reaffirmed India's consistent support for peace efforts and reiterated the call for peaceful resolution of the conflicts through dialogue and diplomacy. The Prime Minister requested Secretary Rubio to convey his warm greetings to US President Donald Trump and said that he looked forward to their continued exchanges. Prime Minister Narendra Modi has emphasized that government jobs serve as a vital means to improve and ease the lives of the citizens. He made these remarks while addressing the 19th Rozgar Mela through video conferencing today. He noted that the nation has placed its trust in its Karma Yogis and it is now their responsibility to honor and strengthen that trust through their dedication, conduct and everyday actions.
2: 51,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र मिला है। आज आप सभी देश की विकास यात्रा में अहम भागीदार बन रहे हैं, जिम्मेवार भागीदार बन रहे हैं। रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, हेल्थ, एजुकेशन और दूसरे कई क्षेत्रों में आप सभी नई जिम्मेदारियां संभालने जा रहे हैं। आने वाले वर्षों में विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने में आप सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं।
1: Commerce and Industry Minister Piyush Goyal today said India continues to witness strong economic fundamentals and robust export growth amid global turbulence. He said the pace of export growth recorded in April has continued into May, reflecting the resilience of the Indian economy amid global adversities. Briefing media in New Delhi, Mr. Goyal highlighted that the government has absorbed the burden of elevated fertilizer prices to protect farmers from rising input costs. India is the only major economy in the world to have held retail fuel prices essentially unchanged through the first 76 days of the Strait of Hormuz disruption. According to sources, India continues to absorb the global oil shock amid the Russia-Ukraine war and the closure of the Strait of Hormuz. Sources said the government cut

0: আকাশবাণীত বিজ্ঞাপন দিয়ক অগণিত শ্রোতার কাষ চাপক।
1: Our voice gets you heard everywhere.
0: বিজ্ঞাপন জনসাধারণক সজাগ কৰিবলৈ আৰু চৰকাৰী আঁচনিৰ বিষয়ে অৱগত কৰাবলৈ আমাৰ ফোন নম্বৰটি হৈছে
1: 6900453528।
0: আকাশবাণী গুৱাহাটী, সর্বক্ষণ সর্বত্র আপোনাৰ সৈতে।
2: এই আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ খন্তেক পাছতে কমেৰ হিন্দীত আৰু ইংৰাজীত বাতৰি দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা লৈ শুনোৱা হ'ব।
3: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই মুকেশ কুমাৰ বল। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमरीका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस दौरान विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। श्री मार्को रूबियो 26 मई को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज कोलकाता पहुंचे, जहां उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी का दौरा किया और मदर टेरेसा की विरासत को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले में कहा कि देश ने अपने कर्मयोगियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
4: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
3: रोजगार मेले में आज 51,000 से भी अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात में वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ी कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। उन्होंने कहा कि सरकार भव्य योजना के माध्यम से कारोबारी सुगमता के लिए देश भर में 100 औद्योगिक पार्क स्थापित करेगी। श्री गोयल ने कहा कि 33,600 करोड़ रुपए से अधिक के आवंटन वाली भारत औद्योगिक विकास योजना के अंतर्गत प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथली सानू भौगोलिक संरचना से पहली बार लगभग 25,000 मानक घनमीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था अगले महीने की 21 तारीख तक इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू होगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में

0: এই আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ খন্তেক পাছতেই সংস্কৃত বাতৰি দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা লৈ শুনোৱা হ'ব।
1: আকাশবাণী সম্প্ৰতি বাৰ্তাঃ শ্ৰূয়ন্তাম প্ৰৱাচকঃ ললিত মোহন তিৱাৰী। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एकोनविंशतितमे आजीविका मेलके अद्य प्रशासनस्य विभिन्न विभागेषु संस्थासु च नवनियुक्तेभ्यः एकपञ्चाशत्सहस्राधिकेभ्यः युवकेभ्यः नवनियुक्तिपत्राणि प्रदत्तानि। बिहार प्रशासनेन घोषितं यत् आगामिषु पञ्चवर्षेषु राज्ये एकलक्ष शिक्षकाणां नियुक्तिः भविष्यति। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद इत्यनेन द्वादशी कक्षायाः वार्षिक परीक्षायाः उत्तरपुस्तिकानां प्रतिलिपिं प्राप्तुम् आवेदनस्य अन्तिमा तिथिः एकदिवस पर्यन्तं वर्धिता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा अमेरिका देशस्य विदेश मंत्री मार्को रूबियो च भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक संधिं सुदृढ़ीतुं चर्चां कृतवन्तौ। विश्व स्वास्थ्य संघटनेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो देशे इबोला संक्रमणस्य बुंदी बुग्यु प्रभेदस्य सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटं राष्ट्रीय स्तरे उच्चतः अतीव उच्चस्तरे वर्धितम्। अपि च आईपीएल विंशति प्रतिविंशति क्रिकेट क्रीडा स्पर्धायां अद्य लखनऊ सुपर जायंट्स पंजाब किंग्स दलयो मध्ये लखनऊ नगरे स्पर्धा भविष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एकोनविंशतितमे आजीविका मेलके अद्य प्रशासनस्य विभिन्न विभागेषु संस्थासु च नवनियुक्तेभ्यः एकपञ्चाशत्सहस्राधिकेभ्यः युवकेभ्यः नियुक्तिपत्राणि प्रदत्तानि। एतत् आजीविका मेलकं सम्पूर्णे देशे सप्तचत्वारिंशत् विभिन्न स्थानेषु आयोजितः आसीत्। सम्पूर्णदेशात् चयनिताः एते नूतनकर्मचारिणः रेलमन्त्रालये गृहमन्त्रालये स्वास्थ्य परिवार कल्याण मन्त्रालये उच्चशिक्षाविभागे च इत्यादिषु विभिन्न मन्त्रालयेषु विभागेषु च स्वसेवाः प्रदास्यन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अवदत् यत् प्रशासनिकनियुक्तयः नागरिकाणां जीवनं श्रेष्ठतरं सुलभतरं च कर्तुं महत्वपूर्णं साधनम् अस्ति। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् राष्ट्रेण स्वीयकर्मयोगिषु विश्वासः प्रदर्शितः अस्ति। अधुना तेषां दायित्वमस्ति यत् ते स्वीयया निष्ठया सदाचारेण दैनिककार्येण च तस्य विश्वासस्य मानं रक्षेयुः।
2: कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है कि इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं।
1: श्री मोदी अवदत् यत् सम्पूर्णः विश्वः भारतस्य विकासयात्रायां सम्मिलितुं भवितुम् उत्सुकः अस्ति। प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् प्रत्येकः भारतीयः विकसितभारतस्य निर्माणाय संकल्पेन सह कार्यं करोति। अस्य लक्ष्यस्य प्राप्तये राष्ट्रं बहुषु क्षेत्रेषु निवेशं करोति। प्रधानमन्त्री यूनां कृते नूतनवृत्त्यावसराणां सृजनं क्रियमाणम् इति विशेषरूपेण अवदत्।
2: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
1: श्री मोदी अग्रे उक्तवान् यत् प्रत्येकः भारतीयः सप्तचत्वारिंशदधिकद्विसहस्रतम पर्यन्तं भारतं विकसित भारतं कर्तुं दृढसंकल्पेन कार्यं करोति।
2: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।

0: আমাৰ এতিয়াৰ বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল। পৰৱৰ্তী বাতৰি 7:10 শুনিবলৈ পাব। নমস্কাৰ।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে করিশ্মা রায়। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्क रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापार वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस दौरान विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। श्री मार्को रूबियो 26 मई को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले में कहा कि देश ने अपने कर्मयोगियों पर भरोसा जताया है। अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे और मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। नवनियुक्त 51,000 से भी अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इसी कार्यक्रम में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार का मुख्य प्रयास भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए भर्ती हुए लोग 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
2: विकसित भारत 2047, जब उस गोल, उस विजन को सामने रखते हैं तो हमारा काम भी बड़ा सुगम हो जाएगा। और हिम्मत से काम करें, अच्छा काम करें, बदलाव में पहल करें। जहां जहां कोई चीज में हमारे नई सोच है, नए आइडियाज हैं, अगर हम सब ने नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया, हम भी अपने आप को रीट्रेन करें, रीस्किल करें, अपग्रेड करें हमारी नॉलेज, और आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यूअस लर्निंग शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ।
1: श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात में वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ती कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। उन्होंने कहा कि सरकार भव्य योजना के माध्यम से कारोबारी सुगमता के लिए देश भर में 100 औद्योगिक पार्क स्थापित करेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथली सानों भौगोलिक संरचना से पहली बार लगभग 25,000 मानक घन मीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में मदद मिलेगी। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू होगी। मुख्यमंत्री शुभेंद्र अधिकारी ने आज कोलकाता में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के जामिया नगर में एक दलित महिला के कथित अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन से संबंधित मीडिया रिपोर्टों का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने दिल्ली पुलिस आयुक्त से 7 दिनों के अंदर विस्तृत कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने आरोपियों की गिरफ्तारी, जांच, पीड़िता की सुरक्षा, परामर्श और पुनर्वास उपायों सहित तत्काल सख्त और समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने केरलम में बुधवार तक अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त करते हुए 9 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को 27 मई तक केरलम, कर्नाटक और लक्षद्वीप के तटवर्ती इलाकों में न जाने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi and US Secretary of State Marco Rubio today discussed sustained progress in the inter-US Comprehensive Global Strategic Partnership and issues related to regional and global peace and security. Mr. Rubio called on the Prime Minister Modi at Seva Tirth in New Delhi this afternoon. Mr. Modi said in a social media post that India and the US will continue to work closely for the global good. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar and NSA Ajit Dobhal were also present during the meeting. The Prime Minister's office said in a statement that Secretary Rubio briefed Mr. Modi on the sustained progress in bilateral cooperation across a wide range of sectors including defence, strategic technologies, trade and investment, energy security, connectivity, education and people-to-people ties. Mr. Rubio shared US's perspective on various regional and global issues including the situation in West Asia. The Prime Minister reaffirmed India's consistent support for peace efforts and reiterated the call for peaceful resolution of the conflicts through dialogue and diplomacy. Prime Minister Narendra Modi has emphasized that government jobs serve as a vital means to improve and ease the lives of citizens. He made these remarks while addressing the 19th Rozgar Mela through video conferencing today. The Prime Minister highlighted the world is eager to be part of India's growth journey. He said that the country is also partnering with various countries of the world aimed at providing opportunities, employment and global exposure to the youth of the nation.
4: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग-अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ-साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
3: The centre has asked Gymkhana Club in New Delhi to hand over its premises by the 5th of next month, citing that the land was required for strengthening defence infrastructure. An order issued by the Land and Development Office under the Housing and Urban Affairs Ministry yesterday stated that the land is essential to fulfil urgent institutional needs, governance infrastructure and public interest project. It said the premises located in a highly sensitive and strategic area of Delhi is critically required for the strengthening and securing of defence infrastructure and other vital public security purposes. It further stated that possession shall be taken in accordance with law in the event of non-compliance. Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri today informed that Oil India Limited has successfully unlocked a new gas-bearing pay zone in the Dandewala field in Rajasthan. In a social media post, Mr. Puri said that the flow of natural gas for the first time from the shallower Shanu formation at nearly 25,000 standard cubic meters per day marks a significant achievement. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal today said India continues to witness strong economic fundamentals and robust export growth amid global turbulence. He said the pace of export growth recorded in April has continued into May, reflecting the resilience of the Indian economy amid global adversities. Briefing media in New Delhi, Mr. Goyal highlighted that government has absorbed the burden of elevated fertilizer prices to protect farmers from rising input costs. The Ayushman Bharat scheme will start in West Bengal from July this year. Chief Minister Shubhendu Adhikari today announced it in Kolkata after a virtual meeting with Union Health Minister J.P. Nadda. The existing beneficiaries under the state health scheme Swasthya Sathi will be incorporated into the Ayushman Bharat scheme. The Memorandum of Understanding in connection with the Ayushman Bharat Arogya Mandir will be signed in June in New Delhi. In wrestling, Indian grapplers Suraj Vashisht and Sagar Singh advanced to the finals of the men's Greco-Roman categories at the Asian Under-23 Wrestling Championships in Da Nang in Vietnam today, assuring India of at least two silver medals. In the 60 kg category, Suraj Vashisht edged past Kyrgyzstan's Nuristan

0: सागर सिंह ने वियतनाम में आयोजित एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमरीकी विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मार्को रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील दोहराई। श्री मार्को रूबियो इस महीने की 26 तारीख को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमरीका में 20 अरब डॉलर का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
1: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
0: विदेश मंत्री रूबियो ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए दोनों देशों की ओर से आने वाले समय में कई और रोमांचक तथा नई घोषणाएं की जाएंगी। श्री रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दो ऐसे बेहद गंभीर नेता बताया जिनका पूरा ध्यान दीर्घकालिक लक्ष्यों पर केंद्रित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है।

0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप की गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: हमने यह समझा, सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी का उपयोग आवश्यक है। इसलिए पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म्स, नीतिगत सुधार भी किए गए। FDI को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया। पॉजिटिव इंडियनाइजेशन लिस्ट लाई गई। हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट मोर देन 5000 आइटम्स की तैयार की है। इस पॉजिटिव इंडियनाइजेशन लिस्ट में आइटम्स हैं, हम उनको निर्धारित समय के अंदर हम भारत की धरती पर बनाएंगे। हम दुनिया के किसी देश से उसको इम्पोर्ट नहीं करेंगे।
0: श्री सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी लगभग 30-35% है, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 50% किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही।
2: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रोजगार मेले में आज सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में चयनित 51,000 से भी अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार का मुख्य प्रयास भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना रहा है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए भर्ती हुए लोग वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
3: विकसित भारत 2047, जब उस गोल, उस विजन को सामने रखते हैं तो हमारा काम भी बड़ा सुगम हो जाएगा। और हिम्मत से काम करें, अच्छा काम करें, बदलाव में पहल करें। जहां जहां कोई चीज में हमारे नई सोच है, नए आइडियाज हैं, अगर हम सब ने नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया, हम भी अपने आप को रीट्रेन करें, रीस्किल करें, अपग्रेड करें हमारी नॉलेज, और आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यूअस लर्निंग शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ।
0: श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में जबरदस्त वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ी कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथली सानू भौगोलिक संरचना से पहली बार लगभग 25,000 मानक घन मीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: विकसित भारत जी राम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा।

0: चित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया है कि ये भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के जामिया नगर में एक दलित महिला के कथित अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन से संबंधित मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इस संदर्भ में दिल्ली पुलिस आयुक्त से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। चीन के शांक्सी प्रांत में कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। ये विस्फोट कल कियुआन काउंटी की लियू शेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जांच का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। भारतीय सूचना सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी त्रिलोकीनाथ का आज दोपहर निधन हो गया। वे 79 वर्ष के थे। वे कुछ समय से बीमार थे। श्री त्रिलोकीनाथ ने आकाशवाणी के हिंदी समाचार कक्ष में संपादक के रूप में वर्षों तक अपनी सेवाएं दी। वियतनाम के दानांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एतबेकोव से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह को एतजान खलमा खानाऊ से हार का सामना करना पड़ा। लखनऊ में आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ ने 17वें ओवर में 4 विकेट पर 158 रन बना लिए हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू से लेकर भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर सौंपने को कहा। चीन के कोयला खदान विस्फोट में 90 लोगों की मौत। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening, this is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi reaffirms India's consistent support for peaceful resolution of conflicts through dialogue and diplomacy. US Secretary of State Marco Rubio terms India as cornerstone of United States' approach towards Indo-Pacific region. Defence Minister Rajnath Singh asserts the country is becoming self-reliant in defence manufacturing, inaugurates artillery shell manufacturing plant at Shirdi in Maharashtra. Centre asks Gymkhana Club in New Delhi to hand over its premises by 5th of next month for strengthening defence infrastructure.